जी हाँ, धीरे धीरे सुबह भी हो चुकी है और एक नई सुबह में आप अपना कदम भी बढ़ा चुके हैं। एक नए दिन का आगाज़, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, एक नया दिन और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का एक नया मौका। कहते हैं सुबह की पहली किरण सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाती बल्कि हमारे दिल में उम्मीद का एक नया चिराग भी जलाती है। जिंदगी की असली खूबसूरती दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि हमारे दिल में बसे प्यार, अपनापन और इंसानियत में है। एक मीठी सी मुस्कान, प्यार भरे दो बोल और किसी के लिए की गई छोटी सी नेकी किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, नफरत को नहीं मोहब्बत को चुनेंगे, शिकायतों को नहीं शुक्रगुजारी से अपनाएंगे, क्योंकि जब दिल में प्यार होता है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। और इसी प्यार भरे एहसास को सलाम करता है फिल्म संगम का ये सदाबहार नगमा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जिसे बेहद खूबसूरत आवाज़ से सजाया है मुकेश साहब ने, लता जी ने और महेंद्र कपूर साहब ने।

हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है। हम अक्सर दौलत, शोहरत और कामयाबी की तलाश में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपनों के साथ बिताए जाने वाले छोटे छोटे लम्हों की अहमियत भूल जाते हैं। याद रखिए, आखिर में हमारे पास क्या था, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि हमने अपनी जिंदगी में कितना प्यार बांटा और कितने दिलों में अपनी जगह बनाई। इसी गहरी हकीकत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान करता है फिल्म धर्म करम का ये सदाबहार नगमा, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जिसे अपनी बेहद खूबसूरत आवाज से सजाया है मुकेश साहब ने। तो आइए सुनते हैं वही बेहद प्यारा नगमा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ये बहुत ही प्यारा नगमा।

0: రెయిన్బో స్టూడియోలో సమయం 6 గంటలు కావస్తోంది. మరికొద్దిసేపట్లో ముందుగా హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి ప్రసారమవుతాయి.
1: ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే కనకలత. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है. पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है. नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया. संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है. उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है. आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें. कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें. इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं. इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है. अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है. वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे. आयोग

0: संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। The Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad noted that the CJP had previously been granted permission to hold a protest at the venue but had failed to comply with the prescribed guidelines and the undertakings given by the party.
2: We have received an application from Saurav Das, co-convener of Cockroach Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
1: Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are currently in force in the area and warned that Delhi police will take appropriate legal action against anyone found violating the law. Meanwhile, security arrangements have been strengthened across the national capital. The Delhi Metro Rail Corporation DMRC has announced that entry and exit facilities at 45 metro stations will remain closed till 6 this evening for security reasons. The situation will be reviewed by security agencies and further updates will be issued accordingly. Namo Bharat train services between Saraikale Khan and New Ashok Nagar stations in Delhi will remain suspended till 10 p.m. tonight. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory section of the new two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centres to be developed.

0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: FM

0: FM Rainbow
1: 101.9। जागते रहो जागते रहो,
2: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
1: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
2: अफवाहों से
1: धोखाधड़ी से
2: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
1: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
2: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
1: सजग भारत,
2: जागरूक भारत,
1: सशक्त भारत।
2: सुनिए सजग भारत
1: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
2: जागरूक बनिए,
1: सजग रहिए।
3: ఎస్ బస్ మీరు వింటున్నది ఆకాశవాణి రెయిన్బో ఎఫ్ఎం 101.9 స్టూడియోలో

0: हैप्पी मॉर्निंग हैदराबाद, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। इट्स इंडीड ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज अ वेरी स्पेशल एंड सिग्निफिकेंट डे फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एंड टुडे। एंड यू नो ऑलवेज आई कीप टॉकिंग अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट योर मेंटल हेल्थ इज, हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर। एंड टुडे आई एम गोना गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। एंड well, I'm not alone today in the studio. We have a special guest with me, and I'm going to talk more about Mental Health Day today with my special guest, and he has a lot to say. He is none other than a psychiatrist, and he has studied so much about psychology and psychiatry. He's none other than Kambampati Srinivas Garu, Dr. Kambampati Srinivas, and he's with me right here in the studio. Surprise, surprise. Well, good morning, Dr. Srinivas. How are you today?
1: Good morning, Andy. I'm Dr. Srinivas.
0: How are you doing? And today's a very special day. How are you feeling being in the studios today with me?

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

क्रिकेट की दुनिया में एक झलक लेंगे हम विद स्टम्प्ड. स्टम्प्ड इज अ रिले फ्रॉम न्यू दिल्ली इन एसोसिएशन विद बीबीसी इंटरनेशनल एंड आकाशवाणी. वेल, यू विल लिसन टू दैट एट 11:30, सो स्टे ट्यून्ड विद अस. इट्स एन 18-मिनट प्रोग्राम. इट्स स्टम्प्ड रिले फ्रॉम न्यू दिल्ली. स्टे ट्यून्ड.

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. एंड यस, आज है बतकम्मा पंडगा. ऑफ कोर्स बतकम्मा के बारे में एक फुल लेंथ इंटरव्यू किया था सुबह में मुरली जी ने. एंड बतकम्मा पंडगा से क्या याद आता है? बतकम्मा पंडगा से खुशियाँ, रंग और रंगीनता. एंड वो इतनी सारी खुशियाँ समेट के जो बतकम्मा को अपने सिर पे रख के जो नाच गाना होता है, जो माँ यानी दुर्गा माँ कहें या माँ कहें, उनकी जो पूजा होती है, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? जो सब मिल बांट कर जो बतकम्मा सेलिब्रेट करते हैं. आज बतकम्मा की शुरुआत है और कल जो नवरात्रि शुरू हो रही है, और सबको उसकी बधाइयाँ. एंड स्टेट वाइड ये सेलिब्रेशंस हो रही है और खूबसूरत गाने हम यहाँ पे सुना रहे हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. एक थोड़ा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड.

0: आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय कालेखां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Delhi police has denied permission for the proposed protest by the CJP at Jantar Mantar in the national capital today, citing previous violations of guidelines and public safety concerns. Addressing the media in New Delhi yesterday, Delhi Police Joint Commissioner Nupur Prasad said applications seeking permission to hold protests or other programs at Jantar Mantar must be submitted at least 10 days in advance. Ms. Prasad further stated that prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita are currently in force in the area, imposing necessary restrictions to maintain public safety and law and order. Meanwhile, due to security reasons, the entry and exit at 45 metro stations will remain closed today till 6 p.m. These include Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, New Delhi, Seva Teerth and Mandi House. Delhi Traffic Police has also issued an advisory for traffic diversion in various parts of the national capital. BJP National President Nitin Naveen today alleged that opposition parties are making efforts to create instability in the country and acting at the behest of foreign forces. Talking to reporters in New Delhi, Mr. Naveen accused opposition parties of attempting to create a highly dangerous and serious situation in the country. Mr. Naveen also accused the opposition of insulting the public mandate by spreading falsehoods in the name of the constitution. He said repeated electoral defeats had led to desperation among opposition parties. The BJP president said the government will deal firmly with attempts to create tension in the country. India has warned Pakistan that it will not be deterred by nuclear threats and will deliver a fitting response to any terrorist attack. India's senior advisor to the permanent mission to the UN Conference on Disarmament in Geneva, Anmol Sher Bedi, made the remarks while speaking at the United Nations General Assembly's first committee meeting in New York yesterday. He said India would make no distinction between those who sponsor terrorism and those who mastermind it. Defence Minister Rajnath Singh will attend key events of the multinational air exercise Tarang Shakti 2026 at the Air Force Station Jodhpur in Rajasthan today. The exercise, being conducted from September 26 to October 12, aims to strengthen operational cooperation, interoperability and mutual understanding among participating air forces. Seven friendly foreign countries, Australia, the United States, the United Arab Emirates, France, Germany, Sri Lanka and Bangladesh, are participating alongside the Indian Air Force. Several other countries are taking part as observers. The exercise features a diverse range of advanced aircraft, including the F-35 Lightning II, Rafale, F-16, A-400M and KC-30A. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the people on the occasion of Mahalaya. In a social media post, Mr. Modi wished that the blessings of Ma Durga bring happiness, compassion and hope to society. He wished that peace and prosperity prevails all around. The United States has temporarily lifted sanctions on the sale and import of Russian-origin diesel fuel until the 7th of April 2027, following a conversation between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. The U.S. Treasury Department announced the decision last night, authorizing transactions related to the sale, delivery, unloading and import of Russian diesel fuel. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency has predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Punjab, Rajasthan and Uttarakhand. According to IMD, coastal Karnataka and Konkan and Goa may experience hot and humid weather today. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore tomorrow. The match will begin at 7 p.m. The five-match series is level at 1-1 after West Indies defeated India by 6 wickets in the second T20I in Ranchi last evening. And with that, we end this news bulletin.

0: FM Rainbow 101.9
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। अभी आप एक बहुत ही अनोखा शो यानी हमारे सेगमेंट में आपका

स्वागत है। ये सेगमेंट का नाम है यादों की बारात। यानी फिल्मों में हम इतना कुछ देखते हैं, सुनते हैं और याद रखते हैं, और उन यादों की बारात से बहुत ही मन बहल जाता है। फिल्में, आर्टिस्ट, पर्सनालिटीज़ और उनके बारे में बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स हमारे जहन में बस जाती है, और उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल बातें करते हैं। और बात करने से क्या होता है, अरे यार, मन बहल जाता है। आज तो हम ढेर सारी बातें किए हैं अबाउट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। हमने बदकम्मा के बारे में भी बात किया, वो सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं। एंड इतनी सारी बातें करते करते ना बस दिल हल्का होने लगता है। एंड यस, यादों की बारात में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। एंड ऐसी कहानियों के बारे में ना, मतलब ऐसी कहानियां कम नहीं पड़ती, बहुत सारी कहानियां मेरे पास है। तो चलिए कहानियों का, यादों की बारात के साथ आगाज करते हैं, और एक खूबसूरत गाने के साथ। तो ये है मौला मेरे ले ले मेरी जान फ्रॉम चक दे इंडिया। टेक इट अवे।

0: ఎల్ఐసి వారి బీమా ప్లాటినం లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఆప్షన్ తో 7, 10, 12, 15 ఇంకా 18 సంవత్సరాల పాటు ప్రీమియం చెల్లించే సదుపాయం. మీ భవిష్యత్తుకు తగిన ప్రతిఫలం అందిస్తూ బీమా రక్షణ గ్యారంటీడ్ అడిషన్ తో ఇంకా మరెన్నో ప్రయోజనాలు. ఎల్ఐసి బీమా ప్లాటినం తో ఎల్ఐసి ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.
1: పెచానా मालगुडी डेज, बहुत टीवी पर सुना सुना लगता है ना ये मालगुडी डेज, तो देखा देखा भी लगता है. ऑफ कोर्स ये इंडियन राइटर नॉवलिस्ट का काम मालगुडी डेज है, आर के नारायण जी का. जी हाँ, आर के नारायण जी इंडियन राइटर और नॉवलिस्ट एंड वेरी वेल नोन फॉर मालगुडी डेज और इंडियन लिटरेचर इंग्लिश के लिए भी बहुत ही जाने जाते हैं. और आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है. उन्होंने बहुत सारे अकोलेज रिसीव किए हैं, एसी बेंसन मेडल और रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में भी उन्होंने बहुत ही अकोलेज रिसीव किए हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो मेड एन ऑनररी मेम्बर ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स. आपको ये भी बता दूँ कि ही वॉज एन ऑथर ऑफ मोर देन 200 नॉवल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज. His work portrays his characters, social context and everyday life. छोटी छोटी बातों में ना बहुत ही गौर फरमाते हैं और उनके stories में उन्होंने इतना गौर फरमाया है कि हमारे relatability में ना वो बहुत ही मतलब उनका अंदाज लिखने का ना दिल को छू जाता था. And yes, अभी तक भी उनके stories बहुत खूबसूरती के साथ हमारे दिल में बस गए हैं. एंड 60 ईयर्स तक वो लिखते गए, इतने सारे अवार्ड्स और ऑनर्स उन्होंने रिसीव किया है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी और हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स भी उन्होंने रिसीव किया है. और उन्होंने राज्यसभा में के नॉमिनेशन में भी उनको मिला था. एंड मतलब उनका करियर और उनका लाइफ तो इतना खूबसूरत रहा है. आर के नारायण जी के कहानियाँ तो आप सब जानते ही हैं, मैं क्या बताऊँ, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी. लेकिन वो उनके गाने और उनके मालगुडी डेज ब्यूटीफुल. और एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जो मैं प्ले करूँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड. दिस इज़ आकाशवाणी हैदराबाद, FM रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगी.
2: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?

जगजीत सिंह जी। वेल, हम इन्हें गज़ल किंग के नाम से जानते हैं और आज हम ख़ास करके इनको याद कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन भले ही ये इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए ये बस गए हैं। वेल, जगजीत सिंह जी हमें इतने सारे गज़ल दे गए हैं, इन्होंने इतने सारे भाषाओं में गज़ल कंपोज किए हैं और गाए हैं, इंडियन क्लासिकल फॉर्म में और पोएट्री के तौर पे, एंड बोल प्रधान करके कहा जाता है इनके गायकी के अंदाज़ को और इनके स्टाइल को। लाइक बहुत सारे फिल्मों में भी इन्होंने गाया है, प्रेम गीत कहें और इनके म्यूज़िक अर्थ में, या साथ साथ हो, या टीवी सीरियल मिर्ज़ा गालिब में, या कहकशन में, जी हाँ, और इतने इतने कॉम्पोजिशंस में हमें, मतलब इन्होंने जैसे गिफ्ट के तौर पे इन्होंने इतने सारे कॉम्पोजिशंस दिए हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल गज़ल सिंगर्स में से एक, एंड गज़ल किंग इन्हें हम कहते हैं। वेरी वेरी पॉपुलर जगजीत सिंह जी, जगमोहन सिंह धीमन है इनका असली नाम। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2003, एंड यस, दो पोस्टल स्टैम्प्स भी इनके ऑनर में रिलीज किए गए थे, द अनफॉरगेटेबल इंडीड, इनका एक एल्बम का नाम है और ये भी द अनफॉरगेटेबल। बहुत

जगजीत सिंह जी, हाँ जी, हमारे जगमोहन सिंह धीमन जी। 8 फरवरी को उनका जन्म हुआ था 1941 में, और 2011 आज ही के दिन वो हमारे बीच से बस भगवान के पास चले गए, और वहाँ शायद ऊपर से हम सबको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि हम अभी भी उनके गज़ल सुन रहे हैं कि नहीं। वेल, इंडियन कंपोजर, सिंगर, म्यूजिशियन, बहुत सारे लैंग्वेजेस में गज़ल हमें गाकर सुनाए हैं, और बहुत सारे फिल्मों के लिए और टीवी सीरियल्स के लिए भी उन्होंने गज़ल सुनाए हैं। पंजाबी, उर्दू, बंगाली, नेपाली, गुजराती, सिंधी में भी उन्होंने गज़ल सुनाए हैं। और पता है कितने साल के लिए उन्होंने हम सबको गज़ल सुनाए हैं? 51 ईयर्स का करियर था उनका, 51 ईयर्स। 1987 एल्बम बियॉन्ड टाइम वॉज हिज फर्स्ट डिजिटली रिकॉर्डेड रिलीज इन इंडिया, एंड ही वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट, विद सितार प्लेयर रविशंकर जी एंड अदर लीडिंग फिगर्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड लिटरेचर। जगजीत सिंह जी वॉइस्ड हिज कंसर्न्स ओवर आर्ट्स एंड कल्चर इन इंडिया, एंड उसके सपोर्ट के बारे में उन्होंने बात किया है, फोक आर्टिस्ट के बारे में उन्होंने बात किया था, एंड वेल, बहुत सारे कॉजेस के लिए भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। एंड यस, व्हाट एल्स कैन आई से, इतने सारे गाने, इतने सारे हिट वाले गाने, आई जस्ट कांट से मोर अबाउट इट। ब्यूटिफुल लेगेसी।

वो कागज की कश्ती, दैट इज इंडीड ब्यूटिफुल। पद्म भूषण के ग्रहीता, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी उन्होंने जीता था। वी रिमेंबर जगजीत सिंह जी विथ ऑल आर हार्ट एंड ट्रिब्यूट। वेल, मूविंग अहेड, स्टूडियो क्लॉक सेज इट्स 12:57, वी मूविंग अहेड। आई विश आई कुड प्ले मोर ब्यूटिफुल गजल्स ऑफ जगजीत सिंह जी, लेकिन वक्त की पाबंदी की वजह से नहीं प्ले कर पाऊंगी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं हमारे शो के साथ, और आगे है हमारे शो में अगला सेगमेंट। अगले सेगमेंट में हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में जानेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। स्टे ट्यून्ड।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। गाने का नाम है सतरंगी रे, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। यह है दिल से फिल्म से। गाना बहुत ही लंबा है, ऑफ कोर्स 7 मिनट का गाना है, लेकिन आपको गाने के बारे में कुछ बता दें, लेकिन पूरे गाने में आपको शाहरुख खान ब्लैक ड्रेस में दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट द डार्कनेस, इट्स अबाउट द फाइनल स्टेज, यानी इट्स अबाउट मौत, इट्स अबाउट डेथ। क्योंकि ये जो फुल बैकड्रॉप होता है वो लद्दाख के बैकड्रॉप में होता है, द फ्रोजन बैकड्रॉप ऑफ लद्दाख। एंड फराह खान जो है द कोरियोग्राफर ऑफ दिस गाना, वो एक्सप्लेन करती हैं कि बहुत लो ऑक्सीजन लेवल्स में ये गाना शूट हुआ था, एंड सारे एक्टर्स बहुत ही फिजिकल स्ट्रेन में ये गाने को शूट किए थे, क्योंकि वो स्ट्रेन दिखाई देना चाहते थे डायरेक्टर पूरे गाने में, क्योंकि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन गाने में दिखना चाहिए था, क्योंकि द होल गाना वॉज ऑल अबाउट द पेन ऑफ लव। एंड आपने वो लिरिक्स देखे हैं, इश्क पर जोर नहीं, एंड ये मिर्ज़ा गालिब के लिरिक्स है, और मिर्ज़ा गालिब के जो कॉपलेट है उससे लिए गए हैं। एंड ये ऑब्सेशन है, ये मैडनेस है, जो जुनून है प्यार का, इबादत जुनून और आकिदत रेवरेंस ट्रस्ट, ये अल्फाज लिए गए हैं। एंड बहुत ही खूबसूरत गाना है, एंड ऑफ कोर्स AR रहमान का म्यूज़िक जो जस्टिफाई करता है इस गाने को। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग टू बिगिन दिस सेगमेंट विथ। वेल, द सेगमेंट इज अमेजिंग, द सेगमेंट इज कॉल्ड एज दिल ए रुबानी, एंड यस ये हमारा आखिरी सेगमेंट है, एंड इसमें बहुत सारी स्टोरीज हम शेयर करते हैं।

बहुत सारी बातें करते हैं। आप सुनते रहिए, यह है आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 एंड वी हैव अमेजिंग सॉन्ग्स कमिंग अप राइट नेक्स्ट। स्टे ट्यून्ड। इससे पहले कि मैं खो जाऊं गानों में, आपको ये खूबसूरत गाना सुनाना चाहती हूँ। आप भी खो जाइए इस खूबसूरत गाने में। यह है रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये रहा टेक इट अवे।

0: एस डी बर्मन साहब का म्यूज़िक डायरेक्शन, शैलेंद्र साहब के लिरिक्स और नूतन जी, अशोक कुमार और धर्मेंद्र जी का कास्ट और मुकेश जी का गाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कौन आएगा ऐसे, जो जाने वाले हैं वो तो चले जाएंगे, बहुत सारी यादें छोड़कर जाएंगे। जब जगजीत सिंह जी के बारे में मैं बात कर रही थी, ऐसे लगता है ना कि एक बार आ जाए वापस, जो हमारे अपने होते हैं, जो हमें छोड़कर जाते हैं, ऐसे लगता है कि एक बार वापस आ जाए, एक बार जादू की छप्पी लेकर चले जाए, एक बार एक आखिरी बात उनके साथ कर ले, एक बार अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए, एक बार अगर उनकी आंखों में हम देखें और वो बात कह पाए कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, या एक आखिरी बार उनसे कह दे कि जो बात अनकही रह गई, जो अधूरी बात रह गई, एक बार वो कह दे कि बस, बहुत अनकही बातें रह जाती है जो जाने वाले हैं, अगर वो लौट कर आ गए तो क्या बात। आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ग्रीफ जो है बहुत ही कठिन बात होती है, अगर कोई चले जाए उनके दुख में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी रोते हैं और अभी भी उनके दुख से बाहर नहीं आ पाते और खुद का मेंटल हेल्थ खराब कर लेते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ ग्रीफ। और आज भी ऐसे लोग हैं हु डिड नॉट कम आउट ऑफ ग्रीफ। सो इफ़ यू नीड हेल्प, प्लीज़ रीच आउट टू मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट्स। एंड जो चले गए वो तो चले गए, लेकिन आप उनकी याद में अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। आप एक्सेप्ट कर लें कि अभी वो आने वाले नहीं हैं और आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहना, इसी का नाम तो ज़िंदगी है ना। और मतलब मस्त वाले गाने सुने, ऐसे वाले गाने सुने कि झूमना है आपको, जिंदगी का लुत्फ उठाना है ना। चलिए, लता जी की आवाज़ में एक मस्त वाला गाना, तेरी बिंदिया रे, आज रेट्रो का मस्त मज़ा है और ऐसे ही गाने सुनते रहेंगे। यह है आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन।
1: మొదలు పెడదామా ఇన్వెస్టింగ్ పాఠాన్ని?

हाथों की लकीरें या कोई ज्योतिष या कोई भी कुछ भी बता दे, लेकिन क्या होगा यार, सही सही कोई नहीं बता सकता, सिर्फ जिंदगी बता सकता है। हाँ जी दोस्तों, आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये सोच सोच के ना कि क्या होगा क्या होगा, आप ना दिमाग की दही बना लेते हैं। हाँ जी होता है ना ऐसे, आप देखते रहते हैं लोगों को कि इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग के जमाने में डूब जाते हैं, एंड उसके बाद क्या मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि यार ठहराव को ना मानसिक संतुलन बिगाड़ बिगाड़ लेते हैं, ठहराव को नहीं रखते हैं, एंड बहुत ही मतलब खुद से वाहियात सवाल पूछते रहते हैं आप कि क्या होगा कल के दिन, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। यार खुद से थोड़ा प्यार कर लो, उससे इससे प्यार करना बंद करो, खुद से प्यार कर लो, खुद पे थोड़ा थरस खा लो यार, इतना ज़रा थरस खा लो खुद पे। व्हाई डोंट यू लव योर सेल्फ, थोड़ा खुद को यू नो जस्ट लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, यू आर सो ऑसम, तुम कितने ऑसम हो, लुक एट योर सेल्फ, सो इम्पॉर्टेंट दैट यू लव योर सेल्फ। ये ज्ञान मैं पेलूंगी आज, आज पेलने का टाइम है क्योंकि आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये गाने सुनो, मस्त रहो, मौज में रहो, खाओ पियो, ऐश करो, और वेल रेनबो एफएम सुनो, क्योंकि मैं मस्त वाले गाने प्ले कर रही हूँ। मैं हूँ आरजे जयश्री, राइट हियर राइट नाउ, एंड ये चल रहा है हमारा दिले रुबानी, यानी दिल खोल के, दिल और जान के साथ खूबसूरत गाने सुनो। टेक इट अवे, कमिंग अप राइट नेक्स्ट इज एन अमेजिंग सॉन्ग, जिंदगी एक सफर है, सुहाना किशोरदा की आवाज़ में। हियर वी गो।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति,
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से,
0: सजग भारत
1: जागरूक भारत
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर।
1: सजग भारत,
0: जागरूक बनिए
1: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 14 सेकेंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

रहती। कभी हालात हमारे हक में होते हैं, कभी हमारे खिलाफ। कभी रास्ते आसान दिखाई देते हैं और कभी ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। कभी हमारे पास शुक्र अदा करने की बेशुमार वजूहात होती हैं और कभी हम एक छोटी सी खुशी के लिए भी तरस जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच ये है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह रात के बाद दिन भी ज़रूर आता है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे दौर आते हैं कि जब परेशानियाँ एक के बाद एक सामने आती महसूस होती हैं। एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा मसला शुरू हो जाता है। कभी माली मुश्किलात, कभी रोज़गार की फ़िक्र, कभी रिश्तों की उलझन, कभी सेहत का मसला, तो कभी मुस्तकबिल की बेयकीनी। ऐसे वक्त में इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम उम्मीद को ज़िंदा रखना होता है। दिल कहता है कि शायद ये हालात कभी नहीं बदलेंगे, शायद ये परेशानी हमेशा रहेगी, शायद हमारी

0: सकते थे। मुश्किल वक्त हमें सब्र सिखाता है, लोगों की पहचान सिखाता है, अपनी ताकत का एहसास दिलाता है और हमें ये समझाता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है। और कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी की तरजीहात भी दोबारा तय करने पर मजबूर करता है। इसलिए जब ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आए तो ये ना सोचें कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि कभी ये भी सोचें कि मैं इस वक्त से क्या सीख सकता हूँ। क्योंकि शायद आप उस वक्त की पूरी वजह ना समझ सकें, लेकिन वक्त गुजरने के बाद पीछे मुड़कर देखें तो एहसास हो कि वो मुश्किल दौर आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम सबक था। तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अगर मुस्तकबिल धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ज़रा रुककर गहरी सांस लीजिए, अपने आप को याद दिलाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा जिस तरह पिछली रातें गुजर गईं, जिस तरह पिछले दुख गुजर गए, जिस तरह मुश्किल दिनों के बाद आसान दिन आए, इसी तरह आज का ये वक्त भी हमेशा नहीं रहेगा। बस हिम्मत न हारिए, अपनी कोशिश जारी रखिए, अपने लोगों से जुड़े रहिए, जरूरत हो तो मदद भी मांगिए और सबसे बढ़कर उम्मीद का दामन न छोड़िए, क्योंकि अंधेरी रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। और जिंदगी का यही खूबसूरत पैगाम है, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता।
1: हरफे ताबिंदा आप समाप्त कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, ये तो जिंदगी का एक आरसी हिस्सा है। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। ये सोचना बहुत गलत है कि मुश्किल हालात हमेशा बरकरार रहेंगे। मुश्किल हालात में सबसे अहम ये है कि उम्मीद का दामन ना छोड़ा जाए और जद्दोजहद जारी रखी जाए। मुश्किल वक्त आने पर सबसे ज़्यादा अहम होता है कि हम खुद पर यकीन रखें, क्योंकि मुश्किल हालात इंसान को मज़ीद मज़बूत और पुख्ता बनाते हैं।

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादिया हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो। एक सौ एक अशारिया नौ मेगा हर्ट्स पर आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपकी दोस्त आयशा बतुलफशा। सामिन, आज के गीत सुरीले गाते जा में एक अहम मौजू पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। ये मौजू इसलिए अहम है कि आलमी इदारे सेहत का कहना है कि हर आठ में से एक शख्स किसी न किसी जहनी आर्जे में मुबतला है। ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला क्यों है और आज का हमारा ये मौजू इतना अहम क्यों है, सबसे पहले हम आपको वो बता दें, आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का बुनियादी मकसद लोगों में ज़हनी सेहत के हवाले से शऊर बेदार करना है। सामईन, हम आपको बता दें कि जिस तरह से जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, उसी तरह से ज़हनी सेहत भी ज़रूरी है। ज़हनी बीमारियों के बारे में अक्सर गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, तासुबात पाए जाते हैं और

ऐसे में होता यह है कि कई गलतफहमियों और तासुबात के चलते जो मदद की जिन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है वो मदद हासिल नहीं कर पाते हैं, यानी कि ज़हनी सेहत में मुब्तला होने के बावजूद वो तासुबात के खौफ से, गलतफहमियों के खौफ से इलाज कराने से, डॉक्टर से रुजू होने से कतराते हैं। याद रहे कि ज़हनी सेहत इंसानी ज़िंदगी का नहायत ही अहम पहलू है, और आज के दिन को यानी 10 अक्टूबर को दुनिया भर में ज़हनी आलमी सेहत का दिन मनाने का मकसद बस यही है कि लोगों में ज़हनी सेहत के हवाले से शऊर बेदार किया जाए। ज़हनी बीमारियों को लेकर जो गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, जो तासुबात पाए जाते हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए और ज़रूरतमंद अफराद को मदद हासिल करने की तरगीब दी जाए। दोस्तों, ज़हनी सेहत इंसानी ज़िंदगी का एक नहायत ही अहम पहलू है। क्यों? क्योंकि एक सेहतमंद जहन ही इंसान को ज़िंदगी के मसाइल का बेहतर अंदाज में सामना करने, मुस्बित फैसले करने और इसके साथ साथ मुआशरे में मौसर किरदार अदा करने के काबिल बनाता है। दुनिया भर में जहनी सेहत के मसाइल से मुतासिर होने वाले लोगों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। समीन, आज के गीत सुरीले गाते जा में हम जहनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे। जहनी सेहत और हमारी जिम्मेदारी पर भी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ इसी तरह से जुड़िए रहिए, लेकिन साथ साथ हम फिल्मी नगमे भी सुनेंगे। लीजिए सुनिएगा ये खूबसूरत सा गीत जिसे आवाज़ दी है उदित नारायण ने।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयशा अब्दुल्फशा। अगर आप अभी अभी हवाए साथ जुड़े हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के गीत सुरीले गाते जा में हम जहनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। आलमी इदारे सेहत कहता है कि दुनिया में तकरीबन हर 8 में से एक शख्स किसी न किसी जहनी आर्जे से मुतासर है। उसमें डिप्रेशन, इस्तराफ यानी कि बेचैनी, बाई पोलर डिसऑर्डर जैसे मसाइल शामिल हैं। ये बात अहम है कि जहनी सेहत का मसला होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान पागल है। जहनी मसाइल कई किस्म के होते हैं और उनमें से बहुत से मसाइल का इलाज या मौसर इंतज़ाम मुमकिन भी है। सामईन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आलमी इदारे सेहत ने 11 सितंबर 2026 को एक रिपोर्ट जारी की है जो ये कहती है कि तकरीबन 1.2 अरब अफराद जहनी आर्जे के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। रिपोर्ट कहती है कि साल 2023 में तकरीबन 1.2 अरब अफराद जहनी आर्जे के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में तकरीबन हर 7 में से एक शख्स इस्तराब और शदीद बेचैनी में मुब्तला अफराद की तादाद 47 करोड़ है। जहनी दबाव का शिकार अफराद की तादाद 32 करोड़ है, जबकि दीगर मसाइल का शिकार अफराद की तादाद 2.70 करोड़ है। ये आदाद शुमार मुख्तलिफ जहनी अवारिस के तखमीने हैं। इनमें से कुछ अफराद को एक से ज्याद मसाइल भी हो सकते हैं। अहम बात बल्कि काबिल गौर बात यह है कि ये जहनी बीमारी शर्मिंदगी की बात नहीं है। मुनासिब मदद, नफसियाती इलाज और ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात से बहुत से लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि गुजार रहे हैं। ये भी याद रहे कि इस दिन को हर साल किसी न किसी थीम के तहत मनाया जाता है और इस साल जहनी सेहत का आलमी दिन जो उन्वान से मनाया जा रहा है वो है लिव्ड एक्सपीरियंसेस हर्ड रियल वॉइसेस रियल चेंज, यानी जिंदा तजुर्बात को सुना जाए, हकीकी आवाजें हकीकी तब्दीली। सामईन, इस हवाले से हम आपसे और भी बातचीत करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ फिल्मी गीत भी आपको सुनाते रहेंगे। लीजिए सुनिएगा एक और गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से। आवाजें हैं लता जी और उदित नारायण की।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज की घड़ी में 10:06 और 14 सेकंड हो रहे हैं। समय गीत सुरीले गाते जा के तहत हम जहनी सेहत के आलमी दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। जहनी सेहत के बारे में हमने अभी अभी ये कहा था कि जहनी सेहत से मुराद सिर्फ जहनी बीमारी से महफूज होना ही नहीं है। जहनी सेहत हमारे मजमू जज्बात, नफसियाती और सामाजिक कैफियत का नाम है। हम अक्सर जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देते हैं, लेकिन जहनी सेहत पर तवज्जो देना भूल जाते हैं। जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। अगर इंसान मुसलसल जहनी दबाव का शिकार हो तो उसकी जिस्मानी सेहत भी मुतासिर हो सकती है। इसी तरह मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों के बाद इंसान परेशानी, बेचैनी या मायूसी का शिकार हो सकता है। अच्छी जहनी सेहत इंसान को जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुकाबला करने की ताकत देती है। एक मतवाजन जहन इंसान को बेहतर फैसले करने, अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाने और अपने खानदान, तालीमी इदारे या काम की जगह पर मुस्बित किरदार अदा करने में मदद देता है। समय हम अक्सर ये देखते हैं कि हम जिस्मानी सेहत को बेहद अहमियत देते हैं और बात जब जहनी सेहत की आती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत दोनों एक दूसरे

से ही जुड़े हैं। ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज करना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हम बुखार, दर्द या किसी जिस्मानी बीमारी की सूरत में फौरन डॉक्टर से रजू करते हैं, उसी तरह ज़हनी परेशानी की सूरत में भी मुनासिब मदद हासिल करना मामूल की बात होनी चाहिए, लेकिन हम में से अक्सर लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि इसे ऐब समझा जाता है। ज़हनी सेहत के मसाइल क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाए, तो फिर साथ साथ गीतों का सिलसिला भी जारी रहना ज़रूरी है। लीजिए सुनिएगा कविता कृष्णमूर्ति मनहर और साथियों की आवाज़ में, फिल्म सौदागर से लिया गया ये नगमा।

समय ना आप सभी सुन रहे हैं और दो प्रोग्राम नैरंग, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयशा बतुलफशा। समय आज 10 अक्टूबर है और आज जहनी सेहत का आलमी दिन मनाया गया है। हम जहनी सेहत के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो हम आपको ये बता दें कि जिस तरह जिस्मानी सेहत ज़रूरी है, उसी तरह जहनी सेहत भी इंतहाई ज़रूरी है। जहनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जहनी सेहत के मसाइल की आम वजूहात पर हम बात करना चाहते हैं। जहनी सेहत के मसाइल की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सामईन, बाज़ औक़ात माशी मुश्किलात, बेरोज़गारी, घरेलू मसाइल, तालीमी दबाव, मुलाजिमत का तनाव या फिर किसी अजीज की वफात इंसान की जहनी कैफियत को मुतासिर करती है। बाज़ अफराद मुसलसल तन्हाई, समाजी दबाव या फिर मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी के बास भी जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। अब चूंकि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का है, मसनवी जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो सोशल मीडिया है, ये हमारी जहनी कैफियत पर असरअंदाज हो रहा है। दूसरों की जिंदगियों की

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियोज़ की घड़ी में 10:25 हो रहे हैं। सामिन, हम जहनी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जहनी सेहत के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये है कि बाज़ लोग जहनी बीमारी को स्टिग्मा या फिर बदनामी समझते हैं। बाज़ लोग जहनी बीमारी को कमज़ोरी, दीवानगी या फिर किरदार की खराबी समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की सोच ना सिर्फ गलत है बल्कि इसके बास मुतासरा शख्स बरवक्त मदद हासिल करने से भी गुरेज करता है। जहनी बीमारी किसी भी इंसान को मुतासर कर सकती है, चाहे वो तालिब इल्म हो, उस्ताद हो, डॉक्टर हो, कारोबारी शख्स हो या फिर किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। जहनी सेहत का मसला इंसान की शख्सियत और इज्जत का तायुन नहीं करता और इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि जहनी बीमारी को दीगर बीमारियों की तरह ही समझना चाहिए और मुतासरा फ़र्द के साथ तासुब बरतने के बजाय और उसे धुतकारने के बजाय उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। एहतराम और ताउन का रवैया इख्तियार करना चाहिए, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। मौजूदा दौर में हम ये देखते हैं, हमें अक्सर ख़बरों के ज़रिए ये सुनने को मिलता है कि जहनी दबाव के सबब जो तलबा व तालिबात हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं या फिर इम्तिहानात में फेल हो जाने पर वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। आज के दौर में तलबा भी जहनी दबाव का सामना कर रहे हैं। मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र, वालदेन की तौखात और साथियों से मुकाबलाबाजी उनकी जहनी सेहत को मुतासिर कर रही है। वालदेन और असातेज़ा दोनों को चाहिए कि वो बच्चों पर गैर ज़रूरी दबाव डालने के बजाय उनकी बात समझें। और हर तालिब इल्म की सलाहियत चूंकि मुख्तलिफ होती है, इसीलिए सिर्फ नंबरों को कामयाबी का मियार नहीं बनाया जाना चाहिए। तलबा को भी चाहिए कि वो अपनी परेशानी को अपने अंदर रखने के बजाय किसी काबिल एतमाद शख्स से, चाहे वो वालदेन हो, उस्ताद हो या फिर दोस्त हो, से बात करें, मदद तलब करें, क्योंकि मदद तलब करना कमज़ोरी नहीं है बल्कि समझदारी की अलामत है और अगर बरवक्त इलाज किया जाए तो फिर जहनी मसाइल से निजात मिल सकती है। समयन, ये तो था कि जहनी सेहत क्या है, जहनी सेहत क्यों अहम है, जहनी बीमारी

बीमारियों के बारे में जो गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं, हम उसे किस तरह से बच सकते हैं। अब चलिए आपको हम ये बता दें कि जहनी सेहत को बेहतर बनाने के चंद एक तरीके भी हैं जिन्हें हम इख्तियार कर सकते हैं। जहनी सेहत को बेहतर रखने के लिए सबसे पहले मुनासिब और मुकम्मल नींद ज़रूरी है। हम अक्सर ये सुनते हैं कि रोज़ाना 7 या 8 घंटे की नींद लेना इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में, हमने नींद की अहमियत को नज़रअंदाज किया है। बल्कि हम ये भी फरामोश कर रहे हैं, हम ये भी भूल गए हैं कि अगर नींद ना मिली तो फिर कई जिस्मानी और जहनी सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। मुनासिब नींद इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बालिग अफराद के लिए उमूमन रोज़ाना तकरीबन 7 से 9 घंटे की नींद मुफीद समझी जाती है, लेकिन होता यह है कि काम का दबाव, मुस्तकबिल की फिक्र या फिर काम की जगह पर सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से हम अक्सर अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं और रफ्तार रफ्तार नींद की कमी हमारी सेहत मुतासिर करती है। सामयन, बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लीजिए सुनिए एक और नगमा।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए। ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।

है। हमें ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए जहां लोग अपनी जहनी परेशानियों के बारे में बिला खौफ बात कर सकें। खानदानों, तालीमी इदारों, दफातर और माशराती तंजीमों को जहनी सेहत के बारे में आगाही पैदा करने के लिए किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और मीडिया, सोशल मीडिया भी मुस्बित किरदार अदा कर सकते हैं। जहनी बीमारियों का मजाक उड़ाने से या फिर गलत मालूमात फैलाने से गुरेज किया जाना चाहिए। जहनी बीमारियों का मजाक उड़ाने या गलत मालूमात फैलाने के बजाय दुरुस्त मालूमात, हमदर्दी और मदद का पैगाम आम किया जा सकता है। समय जहनी सेहत का आलमी दिन हमें याद दिलाता है कि सेहत सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद जहन भी एक बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी है। हमें अपने जज्बात को समझने, दूसरों की बात सुनने और जरूरत पड़ने पर मदद हासिल करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। एक सेहतमंद मुआशरा वही है जहां जिस्मानी बीमारियों की तरह जहनी बीमारियों को भी संजीदगी से लिया जाए, परेशान शख्स का मजाक ना उड़ा जाए, उसका हाथ थामा जाए और उसकी मदद की जाए। हमें एक ऐसा मुआशरा तश्कील देने की ज़रूरत है जहां मदद हासिल करने को कमज़ोरी नहीं बल्कि हौसले की अलामत समझा जाए।

समीन आप सभी सुन रहे हैं और दो प्रोग्राम नैरंग बज्म सजी है, गीत सुरीले गाते जासे और हम जहनी सेहत के आलम दिन के हवाले से बात कर रहे हैं। जहनी सेहत के आलम दिन का असल पैगाम यही है कि अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखें, दूसरों की कैफियत को समझें और एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहां हर शख्स को सुकून, एहतराम और मदद मिल सके, क्योंकि सेहतमंद जहन ही सेहतमंद खानदान, मजबूत मुआशरे और बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद है।

सामईन गीत सुरीले गातेजा आप समाप्त कर रहे थे और हमने बात की जहनी सेहत के आलमी दिन पर. आइए वक्त हो चला है बज़्म नैरंग की आखिरी पेशकश यानी प्याम शब का. लीजिए समाप्त फरमाइएगा जनाब नदीम अख्तर जैदी से प्याम शब.

दहलीज पर रख दी है किसी शख्स ने आंखें रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। दहलीज पर आंखें रख देने का मतलब ये है कि कोई

शख्स शिद्दत से किसी का मुंतजिर है, जबकि रोशनी उम्मीद और खुशी की अलामत बन जाती है। इंतज़ार में उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सिर्फ किसी के आने से वाबस्ता नहीं करना चाहिए। इंसान को दूसरों के लिए दरवाजे ज़रूर खुले रखने चाहिए, मगर अपने दिल में उम्मीद का चिराग भी खुद रोशन रखना चाहिए। जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आए उसकी कदर करें, और जो ना आए उसके इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे ज़ाया न करें।

पयाम शब आपने समाप्त किया। सामईन, इसी खूबसूरत से पयाम शब के साथ बज़्म नहरंग अब इख्तिताम को पहुंचती है। अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशां को दीजिएगा इजाज़त। इन्हीं मीटर्स पर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। शब बख़ैर, जय हिंद।

101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। सामाइन, स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो दिल्ली से नशर किए जाएंगे।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा

0: कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure permanent membership for the African Union.
2: India and Africa cannot remain unrepresented in global decision making. And that is why India worked resolutely during its G20 presidency in 2023 to secure a permanent membership for the African Union. This decade has seen the UN slide steadily into irrelevance, helpless in the face of major challenges. Our objective is not merely to add more seats around an old table. It is to make global governance more democratic, more responsive, and more represented. And in doing so, make the United Nations itself more capable and more credible.
1: On the final leg of his three-nation African tour, Dr. Jaishankar urged Indian businesses to invest in the continent and called for stronger cooperation in food security, agriculture, and sustainable development. India has said the proposed interim trade agreement with the United States will be finalized in light of changing circumstances. Addressing members of Industry Chamber, PSD Chambers of Commerce and Industry in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the framework announced in February is being reassessed amid changes in the US tariff landscape. He added that India is seeking more favorable tariff terms to ensure its goods remain competitive in the American market. Mr. Goyal said India is simultaneously pursuing trade agreements with several partners, including Israel, Chile, the Gulf Cooperation Council, and the Eurasian Economic Union. The National Investigation Agency has registered a case to investigate last month's mid-air cockpit attack on Captain Smith Machar aboard a Fly Dubai flight. The case has been registered under the relevant provisions of the Anti-Hijacking Act 2016 and the Unlawful Activities Prevention Act 1967. Captain Machar, who hails from Gujarat, was stabbed and seriously injured by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight while travelling from Dubai to Tel Aviv on the 30th of last month. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. Several leaders across the world praised the bravery of Captain Machar, who saved lives of passengers despite being injured. Several protesters who were attempted to reach

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we will be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember, listeners, that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-4044, and 2371-7117. And of course, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. Shrotaon, व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप बेहिचक होकर डायल कीजिए इन नंबरों पर. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0464 और 2371-7117. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें. श्रोताओं, चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले बाजार विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: नमस्कार प्राची, नमस्कार अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Indian stock markets snap their 8-week losing streak. Sensex and Nifty gains around 0.5%. Wall Street wraps up week with notable gains. And global crude oil prices rise during the week.
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार 8 हफ्तों की गिरावट के बाद इस सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई. सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 0.5% का उछाल आया. वॉल स्ट्रीट इस सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़े.

0: We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: श्रोताओं, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं. ये राजस्थान से हैं. इनका नाम है राजेश. राजेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
2: नमस्ते. नमस्ते मैडम. ये मेरा सवाल ये था मैडम कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनियां है, जो ज्यादा चलन आ रहा है मैडम इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कारों का, तो आने वाले भविष्य में 5 साल का अगर अनुमान लेकर चले तो इनका भविष्य किस प्रकार का रहेगा आने वाले 5 साल के लिए?
3: चलिए राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. जिस प्रकार से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है और एनर्जी सुरक्षा को लेके दुनिया भर में बात की जा रही है
1: जी,
3: तो उसमें मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल आप देखें तो हर साल बढ़ रही है. जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है वो भी उसमें निवेश अपना बढ़ा रही है. और इसका जो बुनियादी ढांचा है, जिसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसमें जिस प्रकार से लिथियम बैटरीज में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी रेंज भी बढ़ती जा रही है, कीमतें कम हो रही हैं और इसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे जैसे ये और फैलेगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बढ़ती हुई दिखाई देंगी. और अभी जो लोगों को समस्याएं आती है प्राची अनुभव इसमें, वो ये आती है कि हम दूर गाड़ी अगर ले जाना चाहें तो भाई वहां पर हमको चार्जिंग का मिलेगा. तो अब तो गाड़ी मुझे लगता है 400-500 किलोमीटर वाली गाड़ी आम हो गई है. और अब तो मैंने पढ़ रहा था कहीं पर 1100 किलोमीटर की भी गाड़ी आ रही है जो 1100 किलोमीटर चलती है. तो ये तो लगता है जैसे आप पेट्रोल डीजल भरवा के भूल जाते हैं, तो ऐसे आप चार्ज करके भी काफी टाइम के लिए भूल सकते हैं. तो बहुत उज्ज्वल राजेश जी भविष्य इसका अगले आने वाले सालों में नजर आता है.
1: और शरद जी, जिज्ञासा लोगों में इस प्रकार भी है ईवी को लेकर के कि एक तो आपने डिस्टेंस की बात बताई कि लंबी अगर दूरी पर लेकर के जाते हैं तो क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं अनुभव, लेकिन ये भी है कि गुरुग्राम जैसे इलाके में जहां पर कई बार पानी जम जाता है, वहां पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से हम मतलब कर पाएंगे आवागमन?
3: देखिए, जैसे जैसे इनोवेशन होता है तो देश के अनुसार गाड़ियां बनाई जाती है. तो जो इसकी मशीनरी होती है, जो मोटर होती है, बेसिकली इसमें मोटर होती है
1: जी,
3: तो उसकी जो पोजीशनिंग है, मुझे पता लगा कि कुछ कंपनियां पोजीशनिंग उसको थोड़े हायर लेवल पे कर रही हैं. पहले मोटर नीचे होती थी, तो आप वो कस्टमाइज कर सकते हैं. आप जिन इलाकों में पानी भरता है तो आप वहां पर उसकी मोटर की पोजीशनिंग आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि पानी उसको प्रभावित ना कर सके. तो मुझे लगता है ये भी समस्या का समाधान निकल आएगा.
0: लेट्स गो ओवर टू आवर नेक्स्ट लिसनर. जय कुमार इज कॉलिंग अस फ्रॉम गाजियाबाद. जय कुमार, वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्कार.
0: नमस्ते.
4: टीम को नमस्कार और कोहली जी को विशेष नमस्कार.
3: नमस्कार जय कुमार जी, नमस्कार.
4: मेरा एक सवाल है जो पिछले किसी मार्की मंत्रा में बोला गया था कि जब जब डॉलर स्ट्रांग होता है सोना कमजोर हो जाता है
3: जी,
4: तो इसका क्या लॉजिक है? और हमारी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट निफ्टी इंडेक्स में अभी फायदेमंद होगा या आगे चल के फायदेमंद होगा?
3: जय कुमार जी, आपका पहला सवाल, डॉलर जब मजबूत होता है तो सोना क्यों कमजोर होता है? उसका कारण ये है कि डॉलर की जो दबदबा है, डॉलर का जो रुतबा है, डॉलर का जो पूरा का पूरा सुप्रीमेसी है, वो डॉलर इस समय एक इंटरनेशनल करेंसी है. आप देखें तो दुनिया का अभी भी 60-70% व्यापार, बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो 90% अभी भी डॉलर में होती है. और उधार जो लिया जाता है दुनिया में, लोन्स लिए जाते हैं, वो सब डॉलर में लिए जाते हैं. तो मेजर ऑफ वैल्यू डॉलर है. तो मुझे लगता है कि गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू है, मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है. तो जब डॉलर कमजोर होता है, इसको आप मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, डॉलर जब कमजोर होता है तो ऐसा लगने लगता है सोने के निवेशकों को, ट्रेडर्स को, कि अब डॉलर नहीं तो क्या. तो डॉलर नहीं तो गोल्ड ही ऐसी चीज है जो कि दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है. और डॉलर जब मजबूत होता है तो फिर ऐसे में गोल्ड का थोड़ा सा चमक कम हो जाती है. आने वाले सालों में मुझे लग रहा है जिस प्रकार से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत है, $40 trillion से ऊपर का कर्ज है और बाकी चीजों को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डॉलर की परचेजिंग पावर थोड़ी घट रही है. तो जैसे जैसे घटेगी, इसीलिए सोने का भविष्य जब उज्जवल बताया जाता है तो उसका एक कारण यह रहता है कि डॉलर का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं नजर आता है. तो ये आपने दूसरा निफ्टी का पूछा,
0: निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का की भविष्य आप कैसे देखते हैं कि अभी बेटर?
3: देखिए, अभी तो बहुत चैलेंजिंग टाइम से निफ्टी और सेंसेक्स गुजर रही है. आप देखते हैं, हालांकि 8 हफ्ते का एक जो नजर लगी हुई थी वो थोड़ी सी हटी है, हल्का सा ऊपर गया है. पर अभी मुझे लग रहा है कि अमेरिकन मार्केट से हमें थोड़ा खतरा है, क्योंकि वहां पर जो एक ये डेट बबल बन रहा है, जो उधार, वो मुझे लग रहा है कि ये वापस कहीं डेट डिफॉल्ट इसमें हो गया तो एक बड़ा क्रैश अमेरिकन मार्केट्स में आ सकता है. तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहने का समय है.

0: जयकुमार जी, पर मैं समझता हूं कि लंबी अवधि का जो निवेशक है, 5 साल 10 साल का, उसके लिए मौके भी देती है मार्केट। अगर इस समय वैल्यूएशंस बहुत सारी कंपनीज की अट्रैक्टिव है तो इसलिए इसको मौके की तरह भी देखा जा सकता है, पर उसमें फिर शर्त यह है कि नजरिया लंबे वक्त का होना चाहिए।
1: बिल्कुल। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार सभी को, कोहली सर से। सर नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार
2: सर, तबीयत ठीक है? आवाज में आपकी थोड़ी सी,
0: हाँ आवाज थोड़ी भारी है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी।
2: हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे रिजर्व बैंक की सर मौद्रिक नीति की घोषणा हुई है, जिसमें रिजर्व बैंक ने रेपो रेट जो है सवा क्वार्टर पॉइंट मतलब 0.25% बेसिस पॉइंट बढ़ाया उन्होंने सर
0: जी।
2: तो इससे बैंकिंग सेक्टर में बैंकर लोन ब्याज दर महंगा हो जाएगा रिजर्व बैंक से कर्ज लेने की, तो क्या बैंक आने वाले दिनों में होम लोन ऑटो लोन में बढ़ाएंगे, ईएमआई लोन का बढ़ सकता है सर? और एक सर टेक्निकल थोड़ा सा पूछना था सर
0: जी।
2: जो गोल्डन ब्रेकआउट होता है सर किसी भी स्टॉक में, गोल्डन ब्रेकआउट
0: जिसे,
2: तो कैसे कब पता चलेगा सर कि ये शेयर में गोल्डन ब्रेकआउट लेवल आने वाली है या उसके आसपास अभी ट्रेड कर रही है? धन्यवाद।
0: चलिए, आपने आरबीआई एमपीसी का पूछा। जी हाँ, लोन बिल्कुल महंगे होंगे क्योंकि जब रिपो रेट बढ़ाया जाता है अमित, तो रिपो रेट वो होता है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है, तो वो आगे पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को। बिल्कुल आपकी ईएमआई, और मैं सभी श्रोताओं को ये बता दूं कि ईएमआई आजकल बढ़ाने का ट्रेंड नहीं है। आजकल क्या करते हैं, वो टेन्योर बढ़ा देते हैं, यानी कि आपने 10 साल का लोन लिया हुआ है तो 10 साल 6 महीने, 10 साल 4 महीने, 20 साल का लिया हुआ तो हो सकता है 21 साल का हो जाए। इस प्रकार की आजकल प्रचलन ज़्यादा है, बजाय इसके कि आपकी ईएमआई में बदलाव किया जाए, क्योंकि पीडीसीज वगैरह रखे होते हैं। वैसे भी बैंक ये दिखाते नहीं है कि अब महंगा हो गया, जब आपको पता लगता है लोन ज़्यादा समय तक चल रहा है तो बिल्कुल महंगा होगा, इस तरीके से होगा या उस तरीके से होगा, बात एक ही है। गोल्डन ब्रेकआउट देखिए, पता जब लगता है, जब एक तो स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है और हम लोग जब उसको चार्ट्स पे देखते हैं तो चार्ट्स में जो कैंडल्स हैं वो भी बताती हैं कि गोल्डन ब्रेकआउट हो रहा है। और बढ़िया इसका तरीका वैसे ओपन इंटरेस्ट देखने का है, तो अमेरिकन मार्केट्स में इसको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं, हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे जब देखें निवेशकों का रुझान उस तरफ हो रहा है या कोई बड़ी खबर आने वाली है ऐसी पॉलिसी रिलेटेड उस सेक्टर के लिए, उस कंपनी के लिए, तो उससे भी पता लगता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हमें फिर बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें अनुभव प्राची ये भी है कि हर शेयर के लिए गोल्डन ब्रेकआउट का एक ही नियम हमेशा नहीं चलता है। हम लोग किसी किसी सेक्टर में तो दूर से पहचान लेते हैं, किसी किसी में बहुत पास आने में पहचाना जाता है, तो एक जनरल नियम है। पर आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो समझिए कि
3: मार्केट की समझ होना बहुत जरूरी है इसके लिए।
0: हाँ, पर ये जो हमारे श्रोता हैं अमित,
3: इनकी समझ
0: काफी है क्योंकि ये निरंतर टेक्निकल सवाल पूछते हैं। ये एफएनओ में भी मैंने इनको देखा है कई दफे पूछते वाला, कि मैंने इनको अलर्ट भी किया है सावधान ना करिए जी।
1: बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सप्ताह के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगातार 8 हफ्तों की गिरावट के बाद इस सप्ताह वृद्धि हुई है। पिछले 25 सालों में गिरावट का ये सबसे लंबा दौर रहा। हालांकि रोचक बात यह है कि इस सप्ताह में वृद्धि तब दर्ज की गई है जब वैश्विक बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, विदेशी निवेशक लगातार घट रहे हैं और पश्चिम एशिया में फिर से तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 563 अंक यानी 0.8% बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 99 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़कर 22,520 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में मामूली बढ़त हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 सूचकांक में इस सप्ताह 0.5% की वृद्धि हुई। मौजूदा सप्ताह में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर निवेशकों की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखा गया। सभी चयनित कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 480 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के ऊपर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 43 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए 74 पैसे पर बंद हुआ और

0: 24 घंटे मार्केट्स में रहते हैं। किसी ने मुझे पूछा 24 घंटे कैसे रहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक करते हैं। कभी उधर कॉस्पी खुल जाता है, उधर निके खुल जाता है, हैंगसेंग खुल जाता है, स्ट्रेट टाइम खुल जाता है, शाम दिन में कैक और डैक्स खुला रहता है, फिर उधर डाओ S&P खुल जाता है, लगभग 24 घंटे। तो हमने इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल, रवि जी, कैसे इसको हैंडल किया जाता है, अगर आप DIIs का एक्टिविटी देखें, तो जब जब FIIs बेच रहे हैं तब तब DIIs खरीद रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल के मार्केट में एक आपदा में अवसर कैसे ढूंढा जाता है
1: जी।
0: तो उसका ये एग्जाम्पल है कि 10,000 करोड़, 9,000 करोड़ और कभी कभी तो उनके बेचने से भी ज्यादा खरीदते हैं। तो वॉलिटिलिटी को हैंडल करने का तरीका यही है कि आप जो ट्रेडर्स हैं वो तो देखिए 90% लूज कर जाते हैं, छोटे ट्रेडर्स खासकर, पर जो निवेशक हैं वो जो लॉन्ग टर्म के लिए वो इसमें एक मौका ढूंढते हैं। तो आपको वॉलिटिलिटी परेशान उनको करती है जो डे ट्रेड्स करते हैं या जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो भी कई दफ़े फंस जाते हैं। पर अगर आप 5 साल 10 साल का नज़रिया रख रहे हैं तो इसमें रवि जी इतनी वॉलिटिलिटी हमें परेशान नहीं करती है। मुझे लगता है आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या तो करते होंगे या करते, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत लेसन सिखाया है मार्केट ने पिछले 2 साल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको संदेश मिल गया होगा मैं जो कहना चाह रहा था।
2: Okay, let's move on to our next story. U.S. stock markets ended higher yesterday. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.8%. The Nasdaq Composite as well as the S&P 500 gained around 0.6%. For the week, the S&P jumped 1.1%, Dow rose 0.9%, and Nasdaq advanced 0.6%. A very quick comment from you, Sharaji, on the U.S. markets, because right now, next week, there are certain data which is going to come in. There's going to be U.S. Inflation data which is going to come out. Then there is a retail sale price. So, how do you see the markets moving?
0: I think the bond yields and the dollar index, they are the driving factors. And why the markets rose on when they closed Friday, they closed in the green. It was because of the bond yields cooling down. And there was a bond buyback done. In fact, there were disputed numbers on WAB. First, it was thought to be $39 billion. Then it was thought to be $22 billion. And finally, $6 billion of bond buyback was done against. They received $14.9 billion of bids. So that cooled down from 5.36, it came down to 5.22. That led to the rally.
2: Right. Let's move on to oil now. Global crude oil prices rose this week. Brent crude December futures rose 2.4% to settle at $104.72 per barrel. West Texas Intermediate crude December futures gained 1.7% to end at $91.01 per barrel over the week.
1: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद अमरीका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस में बने डीजल की बिक्री और आयात पर लगी पाबंदियां अस्थायी रूप से हटा दी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूस तुरंत 3 लाख टन से ज्यादा डीजल की सप्लाई करेगा। इसके बाद नवम्बर में 5 लाख टन, फिर 10 लाख टन और रूसी रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर अतिरिक्त 30 लाख टन डीजल की सप्लाई की जाएगी। बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमरीका और ग्लोबल मार्केट में रूस से तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की प्रस्तावित सप्लाई का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। शरद जी, हम इस पर आपसे कमेंट लेंगे, मगर इससे पहले सेतुपति जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: Good evening, Market Mantra team. My name is Sedupathi from Chennai. I have two quick questions, sir. Regarding the Starlink from the Mr. Elon Musk, he's having some barrier inside India. What could be the reason? Is it not the advantages for us? Number two, what is the output of the semiconductor which we are going to get from India? Recently, we started manufacturing. Thank you, sir.
0: All right, your first question, Mr. Setupathi, is regarding Starlink barrier. There are two issues which the Honorable Minister of Telecom revealed. One is, of course, the revenue sharing arrangement of those Starlink is being worked out, because this is a different kind of service. 3 licenses have already been given.
2: Yes.
0: One Web, Reliance Jio, and of course Starlink Booster, Starlink Airtel was the third one. And there's the Amazon Kipiro, which is in the process right now. So one is revenue sharing. Second, you know, satellite phone is something where security becomes an issue. So security compliances have to be looked at. You know, when 2611 happened, there was a

0: the crude
1: या
0: that the deal is about.
1: बहुत ही एक हिंदी में शब्द होता है अनुभव विडंबना, तो बहुत ही उसको इंग्लिश में डाइकॉटमी भी कहते हैं, क्योंकि लिंडसे और ग्राहम बिल जो पेश किया गया भारत के खिलाफ और उन चार देशों के खिलाफ लगाने के लिए, और उसमें तो इसीलिए था क्योंकि भारत वहां से क्यों तेल लेता है. तो आज जब जरूरत पड़ी तो देखिए अमेरिका को भी जब कीमतें बढ़ने लगी तो अपने लिए सोचना पड़ा और करना पड़ा. तो दुनिया तो हैरान है उनके इस निर्णय से कि जब अपने, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह है वहां पर तो वोटर्स नाराज भी हो सकते हैं महंगी तेल की कीमत की वजह से. तो देखिए जब जरूरत पड़ती है तो मैं आगे बोलना नहीं चाहता, पर कुल मिला के बात देखें तो दुनिया के लिए अच्छा है. दुश्मनी तो अच्छी नहीं है, इस प्रकार की खटास कड़वाहट आपस में जितनी जल्दी निकले अच्छी बात.
0: टाइम इज अ टीचर.
1: या
0: Let's move on. The government is likely to announce a policy on stockpiling of critical minerals within a month, a move which is expected to ensure the supply of these resources to strategic sectors like defense, aerospace and energy, according to Secretary of Mines Keshav Chandra. He said that the government is also working on 4 dedicated critical minerals processing parks across Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh and Odisha to fast-track value addition for key battery materials.
2: 2 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 13 अरब अमरीकी डॉलर से घटकर 734.6 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा यानी विदेशी मुद्रा पूंजी लगभग 10.5 अरब अमरीकी डॉलर से लुढ़ककर 604.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गया है. सोने का भंडार 2.2 अरब अमरीकी डॉलर से कम होकर 106.4 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर आ गया है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत की रिजर्व स्थिति 15 मिलियन से फिसलकर 4.7 अरब अमरीकी डॉलर रह गई है. वहीं विशेष आहरण अधिकार 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर लगभग 18.6 अरब अमरीकी डॉलर के स्तर पर दर्ज है. और इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए मगर संक्षेप में क्योंकि समय की बाध्यता है.
3: जी धन्यवाद. कॉलेज नमस्कार. मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे एक हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें अगर एफडी मैच्योर होने के बाद अगर जो पेमेंट है ज्यादा होती है तो ये बैंक में अगर बैंक अपने ही बैंक में 5 लाख के ऊपर कोई एक फॉर्म भरा जाता है ये क्या नियम है इसके ऊपर, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हमसे एक फॉर्म भरवाया गया था जो ट्रांसफर हुई थी पेमेंट तो हमारी परमिशन फॉर्म होता है ये क्या चीज का होता है.
1: अच्छा, ये
3: पेमेंट हम ले जा सकते.
1: देखिये केशव जी, जो लार्ज पेमेंट्स होती है उसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो अब नए नियमों के अंतर्गत वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है और उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए जो बड़ी पेमेंट्स होती है 5 लाख से ऊपर उस पर जनरली बैंक से एक कॉन्फर्मेशन लेते हैं. आजकल तो आप चेक भी बड़ा इशू करें तो आपको बैंक से पहले उसको प्री ऑथराइज करना पड़ता है वरना वो चेक क्लियर नहीं होता. तो लार्ज पेमेंट्स पे आगे फ्रॉड को रोकने के लिए और उसकी ट्रैकिंग के लिए केशव जी ये प्रावधान किया गया है. आपको एक फॉर्म साइन करना पड़ता है. मुझे लगता है इसमें अल्टी थोड़ा सा हैसल तो होता है पर कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए.
2: आगे बढ़ते हैं. नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट प्रारूप इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा. नए प्रारूप के अंतर्गत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा. आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर एमडीआर कैसे काम करता है, तो मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार पेट्रोल पंप पर यूपीआई से फ्यूल खरीदने पर 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट के लिए 5 रुपए की फ्लैट रियायती दर लागू होती है. 5 रुपए की फ्लैट फीस पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को टैंक रिफिल करवाने पर ज्यादा लगने वाली प्रोसेसिंग फीस से बचाती है. 2000 रुपए से कम के सभी फ्यूल भुगतान पर 0 एमडीआर रहता है.
0: Let's move on. The Reserve Bank of India, RBI, has said that the banks will need to maintain 99% of the required cash reserve ratio, CRR, daily, starting from October 16th, up from 90% at present. The move follows a review of the current liquidity condition in the banking system and will help reduce the banking system liquidity, which stood at a surplus of around 3.88 lakh crore rupees as of October 2018. October 8th. A very, very quick comment from you.
1: I think as far as the next week's market is concerned, I think if we quickly comment on that, I think the market will wait for what is going to happen on the bond yields. If this again start rising, and the developments in West Asia, of course, will be paramount.
0: Right.
2: Sharad ji, karyakram mein bhaag lene ke liye aapka bahut bahut dhanyavaad.
1: Dhanyavaad, thank you so much.
0: And before we close, a reminder of the headlines, Indian stock market snap.

11:40 हो चुके हैं, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और घड़ी बता रही है कि बस अब विकास अलविदा कहने का वक्त है। घड़ी बता रही है कि थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद एक बार फिर जुड़िए और जुड़े रहिएगा एफएम गोल्ड के साथ। आपके साथ होंगी जयती।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर चालक रहित परिचालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार उन्नत सिग्नल प्रणाली के साथ 3.7 किलोमीटर की डबल डेकर वाली संरचना है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री समुद्री अवसंरचना को सशक्त बनाने, कार्गो निपटान क्षमता को विस्तारित करने और लॉजिस्टिक दक्षता को दुरुस्त करने के लिए तमिलनाडु में बंदरगाह से संबंधी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडेवाला, पचकुइया मार्ग, गोल डाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रिंग रोड, टी पॉइंट और लोधी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दीपके को उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

0: सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आवाज की दुनिया के दोस्तों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं मंजू बत्रा की लिखी कहानी, तो आइए सुनते हैं।
1: पानी पर लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी, मेट्रो वाली लड़की।

ये रविवार की अलसाई हुई दोपहर का वक्त है। छुट्टी के दिन मैथ्स में इतनी सख्ती नहीं रहती जितनी कि वीक डेज में होती है। वैभव ने प्लेट में अपनी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी, राइस, अचार और साइड में दो रोटियां भी रख ली थी। विंडो से मसूरी की खूबसूरती उसके दिल और दिमाग में उतरती जा रही थी। पहाड़ों पर उतरता आसमान, चीड़ के पेड़ों पर जमी बर्फ, ढलान भरे रास्ते, हरा कंबल ओढ़े पेड़, घुमावदार सड़कें, सब कुछ ऐसा था जैसे बड़े कैनवस पर किसी चित्रकार ने प्रकृति की तस्वीर उतार दी हो। मसूरी की हसीन वादियां वैभव को बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। बचपन में वैभव के फादर समर वेकेशन में उसे जब मसूरी लाए थे, तब उसने इन्हीं खूबसूरत वादियों को कैनवस पर उतार दिया था। कितना खुश हुए थे पापा और अप्रिशिएट करते हुए कहा था, वेल डन माय बॉय, और इनाम में 100 का नोट भी थमा दिया था। पापा तारीफ के मामले में बहुत कंजूस थे। हाँ, डांट बहुत जल्दी देते थे। पापा से तारीफ का मतलब था शर्ट का कॉलर ऊपर करके घर के और लोगों पर भी रौब झाड़ा जा सकता है। वैभव के फादर आर्मी ऑफिसर थे जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे। उनके जाने के बाद घर कितना सूना हो गया था और घर से भी ज़्यादा सूनी हो गई थी मम्मी की आँखें। वो चमक, वो उम्मीद कहाँ गुम हो गई थी जो पापा को देखकर, पापा की यूनिफॉर्म को देखकर मम्मी की आँखों में आती थी। पापा ऐसी जगह क्यों चले गए थे जहाँ से उनकी कोई आवाज़ तक नहीं आती थी।

मम्मी कभी भी वैभव को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली नहीं भेजना चाहती थी, पर वैभव के सर पर तो मानो कोई भूत सवार हो गया था। उसे तो अपने पापा की तरह बड़ा ऑफिसर ही बनना था। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? बोल, दिल्ली इतना बड़ा शहर है, वहाँ कौन रखेगा तेरा ख्याल? कौन है वहाँ जिसे तू अपना कह सके? मम्मी ने झुंझलाते हुए कहा था।

लंबी गहरी सांस भरने के बाद वैभव ने भी कह दिया था, जिस शहर में मेरे पापा का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर लिखा हो वहाँ मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ मम्मी। इतने वज़नदार जवाब के बाद मम्मी ने वैभव को दिल्ली जाने की परमिशन दे दी थी। दिल्ली आने के बाद वैभव ने एक छोटा ही सही पर सिंगल सीटर पीजी रेंट पर ले लिया था। उसने यूपीएससी एग्ज़ाम की बारीकियों को समझने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। वो रात भर पढ़ाई करता पर जब शाम को मम्मी से फ़ोन पर बात करता तो उसका गला भर आता।

वैभव को दिल्ली आए हुए महीने भर से ऊपर हो गया था, पर वैभव अभी तक एक भी फ्रेंड नहीं बना पाया था। नॉलेज के मामले में, हॉबीज़ के मामले में उसका टेस्ट किसी से मैच ही नहीं करता, तो उसमें वो क्या करे। उसने भी दोस्त बनाने की अपनी कोशिश पर फुल स्टॉप लगा दिया था। एक दिन कोचिंग से लौटते हुए रास्ते में उसे किसी ने पैम्फलेट पकड़ा दिया था। उसने पैम्फलेट को पढ़ा। कोई फाइन आर्ट एकेडमी 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स करवा रही थी। संडे संडे क्लास होगी, क्लास की 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग बैच 10 से 12 और इवनिंग बैच 5 से 7। वैभव को ये पैम्फलेट ब्लॉटिंग पेपर की तरह लगा, जिसने उसकी ज़िंदगी से अकेलापन सोख लिया था। वो पढ़ाई के साथ ज़िंदगी भी रंगना चाहता था। वो फिर से कैनवस, ब्रश और रंगों से खेलना चाहता था। उसने तुरंत पैम्फलेट में लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। उसे अकेले चलते हुए भी सहारा दिखाई देने लगा।

आज पेंटिंग क्लास का फर्स्ट डे था। मैम ने सभी स्टूडेंट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद आई स्केच ड्रॉ करना सिखाया और अगले एक घंटे उन्हें जो भी आंखें सबसे सुंदर लगती है उसका स्केच बनाने के लिए कहा। आंखों के नाम पर वैभव के पास अपनी माँ की आंखें ही थी। जब वो पापा के गले लगती और उनके मेडल्स पर हाथ फेरती तो एक अजीब सी चमक उन आंखों में उतर आती थी। उन आंखों की चमक को वैभव ने ड्राइंग नोटबुक में उतार दिया। मैम को उसका आई स्केच सबसे ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने खड़े होकर पूरी क्लास के सामने वैभव के लिए क्लैपिंग की और कहा, वेल डन माय बॉय। आज उसे पापा की बहुत याद आ रही थी। जब भी वो कोई अच्छी पेंटिंग बनाता, पापा उसकी हमेशा पीठ थपथपाते और कहते, वेल डन माय बॉय। आज वो बताना चाहता था कि किसी और ने भी उसकी पेंटिंग की तारीफ की है और वेल डन माय बॉय कहा है। वो अपनी खुशी बांटना चाहता था, वो मम्मी को बताना चाहता था, पर वो जानता था कि मम्मी उसकी खुशी में तो शामिल हो जाएंगी लेकिन पापा का जिक्र छिड़ने के बाद पूरी रात उनकी फ़ोटो फ्रेम को गले से लगाए रोती रहेंगी। कैसा शहर है दिल्ली, जहाँ खुशी और गम दोनों अकेले ही निकल जाने होते हैं। हमने तो सुना था कि दिल्ली दिलवालों की है।

मेट्रो में वैभव दो सुंदर आंखों के पीछे खींचा चला आता है। कितनी सुंदर आंखें थी वो, गोल गोल उम्मीदों से भरी, मुस्कुराहट से भरी। कोई अपनी आंखों से भी हंस सकता है, कितनी गहराई थी उन आंखों में। अगर आरोही ने उसे डांटा ना होता तो उसे मालूम ही ना पड़ता कि वो आरोही के चेहरे पर कितना झुक गया था। तमीज नहीं आपको खड़े होने की? आरोही ने गुस्से में वैभव को डांटते हुए कहा, सॉरी, मैं इस शहर में नया हूँ। पहली बार मुझे इस शहर में किसी की आंखों में इतना अपनापन दिखा, इसलिए इतना नज़दीक खींचा चलाया। सॉरी, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। वैभव नाम है मेरा, IAS की तैयारी कर रहा हूँ। इसके साथ मैं संडे को फाइन आर्ट क्लास भी लेता हूँ और आज फाइन आर्ट क्लास में मुझे बेस्ट आइज स्केच का प्राइज़ भी मिला है। वैभव ने बैग खोलकर आरोही को अपना आई स्केच दिखाया। आरोही का गुस्सा भी लगभग गायब हो गया था, क्योंकि वो मानती थी कि कलाकार झूठा हो सकता है पर उसकी कला निर्दोष होती है। कुछ था वैभव की ड्रॉ की हुई आइस में, वो खुद भी खो गई थी उन एक जोड़ी आंखों में। किसकी आंखें हैं ये? आरोही ने गर्दन ऊपर करते हुए खड़े हुए वैभव से पूछा। मेरी माँ की आंखें हैं, वैभव ने कहा। बहुत सुंदर आंखें हैं, आरोही ने ड्राइंग बुक पर हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू, अपनी ड्राइंग नोटबुक को वापस लेते हुए वैभव ने कहा। सॉरी वैभव, तुम्हारी ड्राइंग बुक गीली हो गई और आंखों की पेंटिंग भी कुछ फेडेड हो गई है। वो एक्चुअली बाहर बारिश हो रही थी ना, इसलिए मेरा ओवरकोट भी गीला हो गया है। मेरे गीले कोट की वजह से तुम्हारी आइस पेंटिंग ख़राब हो गई है। सॉरी वैभव, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, इन आंखों को गीला होने की पुरानी आदत है, वैभव ने लंबी और गहरी सांस खींचते हुए कहा। मतलब तुम नहीं समझोगी, कहकर वैभव अपने मोबाइल में कोई तस्वीर देखने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुई, अगला मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। आरोही अपना मोबाइल और पर्स संभालते हुए खड़ी हो गई और वैभव ने भी जल्दी से अपनी ड्राइंग नोटबुक को बैग में रख लिया। तैयारी

से लग रहा था शायद दोनों को ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरना था। तो आप कौन सी वाली मेट्रो लेंगी? वैभव ने पूछा। समयपुर बादली वाली। और आप? हुड्डा सिटी सेंटर वाली, वैभव ने जवाब दिया। यानी हम ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर हैं, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद, पर एक ही डायरेक्शन में जाने वाली मेट्रो के मुसाफिर एक ही मंजिल तक पहुँचे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, आरोही ने मोबाइल को पर्स में रखते हुए कहा। तो क्यों ना अपनी अपनी दिशाओं की ओर मुड़ने से पहले कॉफ़ी हो जाए। और आप बारिश में भीगी भी हुई हैं। देखिए मैं भी कितना बुद्धू लड़का हूँ, कितनी देर से आपसे बातें कर रहा हूँ और आपसे अभी तक आपका नाम तक नहीं पूछा मैंने। नाम पूछे जाने पर आरोही ने तुरंत अपने दिमाग का कैलकुलेटर ऑन कर लिया। किसी अजनबी को फर्स्ट मीटिंग में अपना नाम और फ़ोन नंबर बताना उसे ख़तरे से खाली नहीं लगा। वो लोगों का दिल रखने के चक्कर में अपने नाम और फ़ोन नंबर की वजह से कितनी ही मुश्किलों में फंस चुकी थी। उसने अपने दिमाग को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी थी कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को अपना ओरिजिनल नाम और फ़ोन नंबर कभी नहीं बताएगी। मैंने नाम पूछा है, आपकी बैंक डिटेल नहीं, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली मेन्यू देख रही थी। आकांक्षा, आकांक्षा नाम है मेरा। फ़ोन नंबर मांगने पर उसने वैभव को अपना वो नंबर दे दिया था जो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मेट्रो लेकर अपने अपने रास्ते पर निकल गए। आज पहली बार वैभव को इस अजनबी शहर में किसी अजनबी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। तेरा

नेक्स्ट संडे को रात 8 बजे वाली मेट्रो में वैभव को आरोही नजर आई। कुछ है इन आँखों में जिसे मैं इतनी भीड़ में भी पहचान लेता हूँ। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा, कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? आरोही ने नजरें ऊपर करके देखा, सामने वैभव खड़ा था। कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनी नहीं रही हो? आरोही को आकांक्षा, आकांक्षा चिल्लाने की आवाज़ तो बहुत देर से आ रही थी, पर वो क्या रिस्पॉन्स करती? वो तो आरोही थी, आकांक्षा तो सिर्फ उसकी कल्पनाओं में थी। सॉरी वैभव, मैंने कान में ईयरफोन लगाया हुआ था इसलिए तुम्हारी आवाज़ को सुना ही नहीं मैंने। कैसे हो? बहुत बुरा। अच्छा बाबा, सॉरी। दिखाओ आज तुमने ड्राइंग नोटबुक में क्या क्या बनाया। और वैभव भी खुश होकर आरोही को अपनी पेंटिंग दिखाने लगा। उसे बताने लगा आज कोचिंग में क्या हुआ, ड्राइंग क्लास में क्या हुआ। दोनों ने कॉफ़ी पी और फिर मेट्रो की येलो लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मेट्रो में अपने घर के लिए निकल पड़े। डेली रूटीन की तरह संडे का भी एक रूटीन बन गया था। वैभव हर संडे मेट्रो पर आरोही का इंतज़ार करता। शायद ही कोई ऐसी बात हो जो वैभव ने आरोही को ना बताई हो। आरोही जानती थी कि वैभव उसे प्यार करने लगा है और वो भी उसे प्यार करने लगी थी। आरोही उसे कैसे समझाती कि वो आकांक्षा नहीं, आरोही है, और उसका मोबाइल नंबर वो नहीं है जो उसके पास है, बल्कि उसने तो अपना नंबर अभी तक उसे दिया ही नहीं। आरोही को लगने लगा कि वो वैभव को चीट कर रही है। वो सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं वो वैभव को खो ना दे, वो उसे फ्रॉड ना समझ ले।

आरोही एक रेडियो जॉकी है जो हर संडे की शाम को 5 से 7 का स्लॉट करती है। ऑफिशियली ऑर्डर निकलता है और अब उसका स्लॉट और टाइम चेंज हो गया था। नए स्लॉट के हिसाब से अब उसे हर संडे रात 10 से 12 बजे का स्लॉट करना होगा। टाइम बदल जाने की वजह से आरोही ने मेट्रो से जाना छोड़ दिया था। उधर वैभव ने कई संडे शाम से लेकर रात रात भर उसका इंतज़ार किया और थक हार कर उसने अपने मन को समझा लिया था कि इस अजनबी शहर ने उसे एक बार फिर ठग लिया है। अपने इस गम को भी उसे अकेले ही निगल जाना था। वैभव का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी दुनिया सिर्फ अपने पीजी तक सीमित कर ली थी। वो रात रात भर जागकर घंटों घंटों पढ़ता। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका सिलेक्शन UPSC में हो जाता है। उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए मसूरी जाना होगा। वो दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। वो कभी नहीं आना चाहता था इस शहर में। पर जाने से पहले वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कॉफ़ी कैफ़े पर जाकर एक बार कॉफ़ी पीना चाहता था और उन यादों को हमेशा के लिए फेंक आना चाहता था। उसने आरोही के ऊपर बनाए सारे स्केच भी अपने बैग में रख लिए थे। हर संडे जब वैभव आरोही से मिलता तो अपने PG पहुंचने के बाद उसका एक स्केच ज़रूर बनाता। उसने ये बात आरोही को कभी नहीं बताई थी। वो स्केच बंडल को भी अपने साथ ले गया। कॉफ़ी पीने के बाद उसने आरोही के फेस स्केच के बंडल को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल रूम में दे दिया था और कहा था इस शक्ल की लड़की यहाँ आए तो उसे ये दे देना, उसका नाम आकांक्षा है। एक स्केच के नीचे उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया था। कितनी यादें थी इस मेट्रो स्टेशन की उसके मन में, कितना कुछ दिया था इस येल्लो लाइन ने, दोस्ती, खुशी, अपनापन, और फिर एक झटके में सब कुछ छीन भी लिया था वो इस मेट्रो स्टेशन से, इस शहर से, और शायद आरोही की जिंदगी से भी बहुत दूर जा रहा था कभी ना लौटने के लिए। उसे पहले ही मान लेना चाहिए था कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। फिर क्यों वो कोशिश करता रहा दो जुदा राहों के मुसाफिरों को एक मंजिल पर पहुंचाने की।

एक दिन शॉपिंग से लौटते वक्त आरोही के मेट्रो कार्ड से एंट्री नहीं हो रही थी। पूछने पर पता चला कि टेक्निकल फॉल्ट है और कंट्रोल रूम में जाकर पूछना होगा। आरोही ने ध्यान दिया, ये तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है, उसका सबसे फेवरेट मेट्रो स्टेशन, उसका प्यार वाला मेट्रो स्टेशन, उसके ख्वाब वाला मेट्रो स्टेशन। कंट्रोल रूम में जाने के बाद कंप्यूटर में कुछ चेक करने के बाद मेट्रो ऑफिसर ने कहा, नाउ इट्स वर्किंग मैम, थैंक यू। मेट्रो कार्ड लेते हुए आरोही ने कहा, आकांक्षा, आप आकांक्षा है ना? मेट्रो ऑफिसर ने कहा, हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? कोई लड़का आपके फेस स्कैच का ये बंडल दे

बताया था, उसी ने बताया था कि आपका नाम आकांक्षा है। आरोही की आंखें भर आई थी, वो बताना चाहती थी कि वो आकांक्षा नहीं बल्कि आरोही है, वैभव की आरोही। इतना प्यार था तो वैभव कभी कुछ कहा क्यों नहीं, बस स्केचेस में ढाल देने से या रंगों में उतार देने से प्यार का इजहार हो जाता है भला। कुछ तो कहा होता, कभी तो कहा होता। क्या कहा होता आरोही, तुमने तो वैभव को अपना नाम तक सही नहीं बताया था। कितनी बार वैभव ने पूछा तुम्हें म्यूजिक से इतना प्यार क्यों है, इसके जवाब में कितनी आसानी से तुमने कह दिया था आई एम ह्यूज म्यूजिक लवर। कितनी बुरी हूँ मैं, और मैं इतना बुरा ही डिजर्व करती हूँ। आरोही स्केचेस देखते हुए रो रही थी। उसने देखा कि एक स्केच पर वैभव का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। उसने जल्दी से नंबर भी डायल कर दिया। वो वैभव को फ़ोन करने ही वाली थी कि उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अब वैभव IAS हो गया है, क्या उसे ये नहीं लगेगा कि मैंने उससे नहीं बल्कि उसकी पोजीशन से प्यार किया है, उसके रुतबे से प्यार किया है। उसे मैं लालची नहीं लगूंगी जब उसे पता चलेगा कि मैं आकांक्षा नहीं बल्कि आरोही हूँ। क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। उफ़, ये WH फैमिली के सवाल कभी तो पीछा छोड़ो मेरा। हिम्मत करके आरोही ने डायल नंबर पर फ़ोन कर दिया। रिंग हो रही थी। हेलो हेलो वैभव, मैं आरोही। कौन आरोही? आकांक्षा। ओ, मेट्रो वाली लड़की जिसकी आंखों पर मैं मरा जाता था और जिसने मुझे सच में मार भी दिया। सॉरी वैभव, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैं रेडियो पर आकांक्षा के नाम से ही काम करती हूँ। तुम रेडियो जॉकी हो, ये बात भी तुमने मुझे कभी नहीं बताई। मैं बताना चाहती थी वैभव, पर अचानक मेरे शो का टाइम चेंज हो गया था और मैं लेट नाइट शो करने लगी थी। मैंने कई बार मेट्रो स्टेशन पर जाकर तुम्हारा इंतज़ार भी किया, पर तुम वहाँ नहीं थे। खैर छोड़ो इन बातों को। कांग्रेट्स वैभव IAS बनने के लिए। मुझे कांग्रेट्स कहने में तुमने 6 महीने लगा दिया रोही। सॉरी वैभव, मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था। क्यों होगा, तुमने कभी कोशिश ही नहीं की मेरे बारे में जानने की। वो तो मैं पागल था जो बिना सोचे समझे तुमसे प्यार करता रहा, तुम्हारी बातों पर विश्वास करता रहा। अब क्यों फ़ोन किया है तुमने मुझे? तुमने मुझे नहीं IAS वैभव को फ़ोन किया है। जब तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था तो आज कहाँ से आ गया? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है आरोही, प्लीज़ लीव मी अलोन। वैभव लगातार बोलता जा रहा था और आरोही चुपचाप उसे सुनती जा रही थी। जब आरोही से सुना नहीं गया तो उसने जवाब दिया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल रूम में मिला है तुम्हारा नंबर। और हाँ, मैंने IAS वैभव को नहीं, उस वैभव को फ़ोन किया है जो मेरे स्केच बनाता था, जो मेरे फेस स्केच के बंडल में अपना दिल लपेट कर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ आया था। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया वैभव, मुझे पहले भी तुमसे प्यार था, आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। मैं नेक्स्ट संडे उसी मेट्रो स्टेशन पर उसी वक्त तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, कहकर आरोही ने फ़ोन काट दिया। सब खाना हो गया हो तो प्लेट उठा लूँ? मैं सर्वेंट की आवाज़ से वैभव का फ्लैशबैक टूटा। वैभव ने टाइम देखा, दोपहर के 3:30 बज रहे थे। उसने तुरंत पैकिंग की और दिल्ली की फ़्लाइट लेकर आरोही से मिलने निकल पड़ा। मेट्रो वाली लड़की यानी आरोही वैभव का मेट्रो स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। वैभव ने आरोही को बाहों में भर लिया। दो ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर एक ही डायरेक्शन और एक ही मंजिल की ओर निकल पड़े थे।

दोस्तों, अभी मैं आपको सुना रही थी पानी पर लिखी कहानी में अपनी ही लिखी कहानी मेट्रो वाली लड़की। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन है रश्मि कुकरेती का। इसके साथ ही मुझे यानी मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ एक विशिष्ट 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर संरचना है जो चालक रहित संचालन के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी, वेल्लोर छावनी, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हॉल में घुस गए और नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से नई दिल्ली की ओर जाने वाली शंकर रोड, वंदे मातरम, टी पॉइंट, गोल चक्कर, झंडेवाला, पचकुइया मार्ग, गोल टाक खाना, पटेल चौक, मंडी हाउस, भैरो रोड, रिंग रोड, टी पॉइंट और लोदी रोड फ्लाईओवर सहित विभिन्न रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके की दादी के निधन और उनके अंतिम संस्कार के समय की जानकारी तुरंत उनके साथ साझा की गई थी। मानवीय आधार पर दिपके को और उनके गृह नगर जाने के लिए हर संभव सहायता और सुविधा की पेशकश भी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।

भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रोशनी तेज करो, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, रोशनी तेज करो चांद सितारों अपनी, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक, मुझको मंजिल पे पहुंचना है सहर होने तक। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत सी महफिल, और आपके साथ हूँ मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म का नाम है आराधना, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और आपके साथ हूं मैं जयती। एक पुराना खत मिला, एक पुराना खत मिला कपड़ों के नीचे किसी संदूक की तह में, जैसे बीते बरसों ने अपनी कोई सांस छिपा रखी हो। स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी, स्याही फीकी थी पर संबोधन में वही गर्माहट थी। अक्षर थोड़े कांपते हुए, फिर भी पहचानने में एक पल भी नहीं लगा। उस पन्ने पर किसी ने प्रेम लिखा था, उस पन्ने पर किसी ने प्रेम लिखा था।

किसी ने घर का हाल, किसी ने लौट आने की आस, और किसी ने बस इतना अपना ख्याल रखना, किसी ने बस इतना अपना ख्याल रखना। कितना छोटा वाक्य था और उसमें कितना बड़ा संसार। बाहर की दुनिया उंगलियों की गति से आगे निकल गई, संदेश क्षण भर में दूर देश तक पहुंचने लगे, मगर इस कागज ने आज भी अपनी धीमी चाल नहीं छोड़ी। वह आज भी शब्दों के बीच चेहरा संभाले हुए है, एक आवाज, एक आवाज, एक मौसम, एक ऐसा अपनापन जिसे किसी स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता। मैंने खत फिर तह किया, मैंने खत फिर तह किया, इस बार संदूक में रखने के लिए नहीं, अपने समय से बचा कर रखने के लिए, अपने समय से बचा कर रखने के लिए। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

कांस खिला तो खेतों ने चांदी का आंचल ओढ़ लिया। कांस खिला तो खेतों ने चांदी का आंचल ओढ़ लिया। हवा चली तो फूलों ने जैसे कोई गीत छेड़ दिया। भादों की भीगी देह से शरद की आहट आई। भादों की भीगी देह से शरद की आहट आई। दूर नदी के किनारे सफेद लहर मुस्कुराई और ऋतु ने धीरे से कहा अब धूप में मिठास आएगी, और अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. और गीत सुहाने में आगे जो हम बातें करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि थोड़ी देर पहले हम खतों की बात कर रहे थे और लिखने की बात कर रहे थे. तो कहते हैं कि शब्दों को हम जितनी खूबसूरती से अपने जीवन में इस्तेमाल करते चले जाते हैं, कागज पर उतारते चले

की बात कर रहे थे और लिखने की बात कर रहे थे। तो कहते हैं कि शब्दों को हम जितनी खूबसूरती से अपने जीवन में इस्तेमाल करते चले जाते हैं, कागज पर उतारते चले जाते हैं, हमारे शब्द जो होते हैं वो उतने ही समृद्ध होते जाते हैं, क्योंकि हम शब्दों में नित नए प्रयोग करने लगते हैं। इसलिए शब्दों से जुड़ना सबसे सुंदर कार्य है और हर व्यक्ति को शब्दों के साथ नित नए प्रयोग जरूर करने चाहिए। सुंदर सुंदर शब्दों से रचिए, जीवन की कहानी को रचने की कोशिश करिए, कुछ लिखने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि एक सुंदर सी रचनात्मक कृति आपके सामने होगी, शब्दों के प्रयोग वाली। कहते हैं कि कांस के कोमल फूलों पर शरद का पहला स्पर्श, कांस के कोमल फूलों पर शरद का पहला स्पर्श, धरती के माथे पर जैसे चांदी का सुंदर हर्ष, हवा इन्हें छूकर निकले तो लहरें बनती जाए, हवा इन्हें छूकर निकले तो लहरें बनती जाए, सूने से पथ पर भी उम्मीदें खिलती जाए। ऋतु बदलने का यह पल कितना सुंदर लगता है, ऋतु बदलने का यह पल कितना सुंदर लगता है। और अगला गीत, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त और आवाज है मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लव स्टोरी। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात ढली तो पारिजात ने, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, जैसे नभ ने चुपके से तारे भेजे हों धूलों से। केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे लगते हैं, केसरिया डंठल वाले सफेद फूल कितने प्यारे लगते हैं, ओस में भीगे लगते हैं, धरती के सपनों से न्यारे लगते हैं। भोर हुई तो शाखें खाली, भोर हुई तो शाखें खाली, आंगन फूलों से भराया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया, रात ने जाते जाते जैसे सुगंध का संदेशा दे दिया, रात ढली तो पारिजात ने आंगन भर दिया फूलों से, आंगन भर दिया फूलों से। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है गाइड।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। अभी छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम, आवाज है आशा भोसले की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी वेल्लोर छावनी अम्बा समुद्रम परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। इस योजना के तहत जिलों की विशेष कृषि आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ ही राज्यों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमानों के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने CGP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास 5 बारूदी सुरंगों को खोजकर सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। घुसपैठ रोधी प्रणाली के हिस्से के रूप में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, लेकिन भारी बारिश के कारण कभी कभी ये प्रणाली बहकर उन स्थानों पर आ जाती है जहां इनसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Mehvash Fatima.

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और आपके साथ हूं मैं जयती। रात का वक्त है तो क्यों ना कुछ बातें रात की कर लें, या यूं कहें कि रात से कुछ बातें कर लें। रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, रात से पूछिए तो वो दिन का हिसाब नहीं मांगती, वो बस अगली सुबह तक थोड़ा समय देती है। जो अच्छा रहा उसे दिल में रखिए, जो बिगड़ गया उसे हर पल दोहराने की जरूरत नहीं। कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, कुछ फैसले सुबह की रोशनी में बेहतर समझ आते हैं, इसलिए हर सवाल का जवाब इसी वक्त जरूरी नहीं। आज बस अपने मन को आराम दीजिए, कोई प्यारा गीत सुनिए और आने वाले कल के लिए थोड़ी जगह बचाकर जरूर रख लीजिए, क्योंकि जिंदगी हर सुबह एक नया पन्ना लेकर आती है और शायद अगली सुबह की कहानी आज की रात से ही शुरू हो रही हो। और अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है द ट्रेन।

बातें हो रही थी रात की, क्योंकि वक्त है रात का, तो रात से कुछ बातचीत हो रही थी। रात ने कहा कि जब घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, जब घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं, तब भी कुछ लोग अपने काम में लगे रहते हैं। कोई किताब के पन्ने पलट रहा है, कोई अगली सुबह की तैयारी कर रहा है, कोई अपनी कला के साथ बैठा है, तो कोई बस रेडियो सुन रहा है। रात की यही दुनिया सबसे दिलचस्प दुनिया है। ये उन लोगों को भी एक जगह ला देती है जो एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। शायद इस वक्त कहीं किसी और कमरे में कोई बिल्कुल वही गीत सुन रहा हो जो आपको पसंद हो, और यही ख्याल रात को थोड़ा और अपना बना देता है। यही ख्याल रात को थोड़ा और अपना बना देता है। और अब जो अगला गीत आप सुनेंगे, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है इंतकाम।

कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं, रास्ते के अनुभव के लिए भी किए जाते हैं। और रात का जो सफर होता है ना, वो ऐसा ही होता है। सड़क के किनारे सोए हुए कस्बे, दूर तक जाती हुई रोशनी और शीशे तक आती ठंडी हवा, सब मिलकर रात के संसार को एक अलग रंग में रंग देते हैं। ऐसे सफर में कोई गीत मिल जाए तो रास्ता और भी अपना लगने लगता है। और आज अगर आप भी किसी सफर में हैं तो ये जो आवाज है FM गोल्ड की, इसको अपना साथ

ही समझिए और मंजिल तक हम आपके साथ ही रहेंगे कुछ गीतों और कुछ खूबसूरत बातों के साथ। तो अगला गीत जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म का नाम है सागर और आवाज है किशोर कुमार की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है शागिर्द और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात की स्याही में शहर अपना नाम लिख रहा है। रात की स्याही में शहर अपना नाम लिख रहा है। दिन भर का किस्सा अब धीरे धीरे मिट रहा है। दुकानों के आधे गिरे शटर, सुनसान से रस्ते और दूर जाती गाड़ी के धुंधले से उजाले। इस पहर की अपनी ही एक तहजीब है। हर आवाज यहाँ कुछ धीमी और करीब है। तो आइए इस नर्म लय में कुछ पल और बिताते हैं और जो गीत रात चुनकर लाई है उसे साथ सुनते हैं। मैं हूँ जयति और ये रात अभी थोड़ी और हमारी है। और अगला गीत फिल्म जाबाज से आप सभी के लिए।

चांद ने फेर ली नजर अपनी, चांद ने फेर ली नजर अपनी, अब मेरे रत जगों का क्या होगा, अब मेरे रत जगों का क्या होगा। वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयति चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। छोड़े जाते हैं आपके एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्य

0: मंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। मिशन ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी संविधान प्रदत्त है और मजबूत संस्थाओं, स्वतंत्र न्यायपालिका तथा स्वतंत्र मीडिया द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करने के लिए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक के मार्ग पर आयोजित किया जाएगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth Rs 13,000 crore at Chennai today. On arrival by a special IAF aircraft, Prime Minister will flag off the Metro Rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है उसी कार्यक्रम का जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ, उसका नाम है हमराही और आज हूँ मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में, आपका दोस्त अर्चित। तो बातें तो कुछ होंगी ही, पर उससे पहले शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। जुड़े रहिए इसी तरह लगातार आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिंदगी इत्तेफाक है। और शायद ये सच भी है कि जिंदगी इत्तेफाक ही है, क्योंकि हर चीज जो हम सोचते हैं ठीक वैसी ही नहीं होती, कुछ चीजें इत्तेफाक से अपने आप ही हो जाती हैं। हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, साथ तुम्हारे हजारों का मेला। हासिल है दुनिया की दौलत तुम्हें, साथ तुम्हारे हजारों का मेला। खाली करके खजाना अपना, मिलो कभी जाकर सबसे। खाली करके खजाना अपना, मिलो कभी जाकर सबसे। दुनिया की भीड़ में खुद को पाओगे अकेला। तीन बजकर 19 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हम राही मेरे यानी अर्चित के साथ।

वहां का जर्रा जर्रा अपनी हालत पर सलामत है। तुम्हारे एक न होने से वहां लेकिन कयामत है।

करते हैं जब तुमको याद तो खुद को ही भूल जाते हैं। करते हैं जब तुमको याद तो खुद को ही भूल जाते हैं। आती है फिर जब अपनी याद तो उसमें भी तुमको ही पाते हैं। यादों का ये दरिया है या है समंदर, यादों का ये दरिया है या है समंदर, एक बार जो फंसे तो और फंसते चले जाते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ। एक और बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग जिसके बोल है, दिल ने दिल को पुकारा।

अब तो रातें ही अच्छी लगती हैं जब से निकले हैं सुकून की तलाश में। अब तो रातें ही अच्छी लगती हैं जब से निकले हैं सुकून की तलाश में। कई दिनों में भी वो चैन नहीं मिलता, कई दिनों में भी वो चैन नहीं मिलता जो मिल जाता है बस एक रात में। यूं तो हर रात हम तन्हा ही होते हैं, यूं तो हर रात हम तन्हा ही होते हैं। तन्हाइयों का अपना ही मजा है जो अब नहीं आता हर किसी के साथ में। तीन बजकर 33 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

हम सोचते हैं कि वो दिन भर हमारे बारे में ही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि वो दिन भर हमारे बारे में ही सोचते हैं, जबकि उन्हें तो हमारा ख्याल भी नहीं। खुद ही याद दिलानी पड़ती है उन्हें, खुद ही बताकर, खुद की याद दिलानी पड़ती है उन्हें, खुद ही बताकर, खुद से उन्हें मेरी याद आ जाए सवाल ही नहीं। पड़ती है जब जरूरत तो याद आ जाते हैं हम उन्हें, पड़ती है जब जरूरत तो याद आ जाते हैं हम उन्हें, वरना हम उनके लिए इतने भी खास नहीं। तीन बजकर 44 मिनट हो चुके हैं। इसी तरह सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

बंदिशें तो हजारों महसूस होंगी, पड़ोगे जब किसी रिश्ते में। बंदिशें तो हजारों महसूस होंगी, पड़ोगे जब किसी किसी रिश्ते में। घुटन भी कई बार लगेगी, निभाओगे जब किसी रिश्ते में। फिर भी बचा कर रखना हर उस रिश्ते को, फिर भी बचा कर रखना हर उस रिश्ते को, क्योंकि तन्हा और आवारगी में जीना बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता।

3:53 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 4,900 करोड़ रुपए की लागत से बनी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना की मेट्रो रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर उन्नत सिग्नलिंग प्रणालियों के साथ 3.7 किलोमीटर लंबी डबल डेकर चालक रहित संचालन वाली संरचना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित किए गए पलानी, वेल्लोर छावनी, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल स्थित 5 अमृत स्टेशनों सहित 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो रहा है। देश भर के 100 आकांक्षी कृषि

0: जिलों में कृषि कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले साल आज ही के दिन यह योजना शुरू की गई थी। पिछले वर्ष जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस 6 वर्षीय पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 11 अक्टूबर को की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदिस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में आज की घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तख्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और नारे लगाए। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपनी सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद 9 और 10 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द और कई के समय में बदलाव किया गया था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को ऐसे नए राष्ट्रपति का चुनाव करना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के किसी समझौते पर बातचीत करने में सक्षम हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की को रूसी तेल रिफाइनरियों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली तेल शोधन संयंत्रों को निशाना बनाने के विरुद्ध भी चेतावनी दी। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 क्रिकेट मैच खेलेगा। होलकर स्टेडियम यह मैच 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth Rs 13,000 crore at Chennai today. On arrival by a special IAF aircraft, Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project built at a cost of around Rs 4,900 crore. He will also travel in the metro train along with Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay. The Poonamalli-Porur corridor features a unique 3.7-kilometer double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operations. The Prime Minister will undertake a ride on the Chennai Metro from Porur bypass station to Poonamalli bypass station and back. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over Rs 750 crore, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cantonment, Amba Samudram, Parmakudi and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat station scheme. Mr. Modi will perform Darshan and Puja at the Jal

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और ये समय रहता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा।

काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ भी ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जान कर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है। आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अर्चित के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रोग्राम जिसका नाम है अरुणिमा।

0: बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: नाना।
1: सुनो तो
0: नाना।
1: सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: muskerij. Pelle denna hatt muskerij. Pelle denna hatt muskerij.
1: सिर्फ भागने से ही अगर मिल जाती मंजिलें, सिर्फ भागने से ही अगर मिल जाती मंजिलें, तो भाग तो पूरी दुनिया ही रही है। हासिल ए मंजिल यहाँ उसी को होती है, हासिल ए मंजिल यहाँ पर उसी को होती है जिसकी दिशा भी सही होती है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही ज़रूरी नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 4:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा, मेरे यानी अपने दोस्त, अपने प्यारे से दोस्त अर्चित के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके बोल थे ये अलबेली प्यार की राहें। सहूलियत के हिसाब से ही आजकल लोग चलाते हैं ये रिश्ते, सहूलियत के हिसाब से ही आजकल लोग चलाते हैं ये रिश्ते, जरूरत के हिसाब से ही निभाते हैं आजकल लोग ये रिश्ते, बिना मतलब के रिश्ते निभाने वालों को जरा संभाल कर रखिएगा, बिना मतलब के रिश्ते निभाने वालों को जरा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि मतलब पूरा होते ही अक्सर लोग खत्म कर जाते हैं ये रिश्ते। 4:25 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा FM गोल्ड पर।

करते रहिए कोशिशें हजारों, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। करते रहिए कोशिशें हजारों, एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं होता। लगातार प्रयास करते रहने से एक ना एक दिन जरूर है हासिल होता। पर हासिल हो जाए जब कुछ भी तो उस पर घमंड मत करना। पर हासिल हो जब कुछ भी तो उस पर घमंड मत करना, क्योंकि ये घमंड ही है जो तुमसे सब कुछ है वापस ले लेता। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:33 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा, जिसका नाम है अरुणिमा, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अलचेत।

बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके सपने हमें रोज आते रहे। 4:44 हो चुके हैं, यूं तो अब सपनों से जागने का समय हो ही गया है। ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। इसी गानों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हो जाएं ये जरूरी तो नहीं। सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

4:58 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। चेन्नई पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल को रवाना करेंगे। वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो ट्रेन में भी यात्रा करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक मेट्रो में यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बा समुद्रम, परमकुड़ी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत

0: 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें की योजनाएं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की दिल्ली में हुई घटनाओं को लेकर चिंताएं बेबुनियाद और देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी भेदभाव के अपने जनादेश के अनुरूप अन्य स्थानों पर हो रहे बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। फिटनेस, युवा सशक्तिकरण और नशा मुक्त भारत के संदेश को सुदृढ़ करते हुए 94वां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल आज वाराणसी में सुबह 6 बजे से नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर केंद्रित इस पहल में युवा, आम लोग और खेल जगत की हस्तियां शामिल होंगी। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय साइकिलिंग महासंघ, राहगीरी फाउंडेशन और माई भारत के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। रेलवे ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया था। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। और खेलों में भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu today. Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi will also undertake a ride on the Chennai Metro from Porur Bypass Station to Punamalli Bypass Station and back. The Punamalli-Porur corridor features a unique 3.7-kilometer double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operations. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over 750 crore rupees, including 5 Amrit stations at Palani, Vellore Cantonment, Amba Samudram, Parmakudi and Namakkal, which have been redeveloped under the Amrit Bharat station scheme. Mr. Modi will perform darshan and puja at the Jalkandeshwarar temple near the Porur lake. Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana has completed 1 year today. The scheme was launched on this day last year to strengthen agriculture in 100 aspirational agricultural districts across the country. Our correspondent reports that the scheme has brought together 36 central schemes across 11 ministries and departments, along with state schemes and private sector participation to address district-specific agricultural needs. Defence Minister Rajnath Singh

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम भोर सुहानी का।

कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं दीवाना करके छोड़ोगे।

0: आंवला विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: यूं तो जागने का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा होता है, पर अगर सूरज की पहली किरण के साथ जागा जाए तो वो सवेरा बाकी से बेहतर ही होता है। 5:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी कुछ सुकून से, हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी कुछ सुकून से, पर उस सुकून को पाने की तलाश में बेकार की दौड़ भाग किए जा रहे हैं। मिलता है अक्सर सुकून हमें अपने भीतर ही, जिसे तलाशते हैं हम दुनिया की भीड़ भाड़ में। पाँच बजकर 30 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।